0: गला मुझको गुस्सा ना दिला, तुझसे फरियाद करूं ले तेरे पाँव परूं, कहना मेरा मान ले तू, ये भी अब जान ले तू, ये भी अब जान ले तू, जान ले तू, जान ले तू,
1: थाकी गयो फरी पर नहीं समझ तो बेशरम।
0: अब भी अगर तू चुप न हुआ तो तोड़ दूँ।

0: ये है लाइका गोल्ड।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साफो ट्रेवल at all protected. Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham. This October, for sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
3: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
4: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
5: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर

गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर।

मन कोय मन्ने सुत होवे मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती सन

छिपते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहें उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई, सो पातशाह साह पत साहिब नानक रहन जाई।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बोला खोवें लख होवें लखवीस।

जोर ना जीवन मरण न जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कछ पकाई।

0: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
1: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
2: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
3: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम। पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक।
4: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा।
3: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ। 29th August हेच एंड हाई स्कूल हैरो, 30th August वुडमेंस्टर्न स्कूल साउथ लंदन। डिनर फ्रॉम 5 PM, शो स्टार्ट्स एट 7 PM। फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947।
5: Like a Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर। Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे।
6: What the papers say after this?
7: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
8: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट ट्रेवल हब world.com स्टार्ट

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208-426-0678.
3: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for 4 people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments, and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. TNCs apply.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: What food mein dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
2: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
1: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak. Fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
2: Friends, family ya special night out. Isi यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वटवुड. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
3: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा.
4: द वेट इज ओवर. इमरान हाशमी रिटर्न्स इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ अ कल्ट क्लासिक अवारापन 2.
3: उसने मुझे छुआ पर अपनाया नहीं.
5: तो फिर
4: Now in cinemas. For your nearest cinema listings, visit Bacronia Media on Instagram.

0: Breakfast with Kajal on Leica Gold.
1: Starting with the A2 fast slip London bound through Dartford Kent, we have an ongoing accident involving a car and a jackknife lorry. It's on the exit slip road to the M25, so completely closed, long delays, diversions via the roundabout. Now the M11 South North Circular Road, we've got queues of 10 minutes, M4 onto the elevated section east, A's to Brentford, usual 10 minute queues, and the A3 West Hill northbound, Tibbetts Corner to Upper Richmond Road, usual slow traffic also this morning. But it is bus strikes that are causing issues around North London and Essex with severe disruption expected right throughout today. Do check before heading out. And now problems with the signals, Heathrow's terminals 1, 2 and 3 on Piccadilly line. That's the latest traffic and travel.
2: Plus, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown up by then.
4: We're not having that, are we?
3: No. Oi, hear that? It's water and cans.
5: And fix those drips and drops.
6: And take shorter showers, yeah?
5: Because when we work together,
3: it all adds up.
6: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
0: This part of the show is brought to you by Star Plus.
7: Previously known as Utsav Plus.
0: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392. Get ready, UK. Snill Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashood Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
7: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snill Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
0: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
7: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner Leica Radio Network.
8: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934.
9: Stardom Media proudly presents Janmashtami Bhajan Jamming with the soulful Nandlal Changa.
10: कृष्णा जन्मनो आनंदोत्सव एक रात एक अनुभव
9: 5th September at Wembley, 6th September at Crawley. Tickets only £25. For tickets booking, visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or StardomMediaLTD.com.
10: Stall and sponsorship mate call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
12: No more worries for me.
0: Southall Travel, at all protected.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
13: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन।
14: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
13: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 02039635. 757 Greens by Danube, prime location,
13: high appreciation
14: in Dubai.
15: Experience the ultimate escape. 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. 2 departures November and February. It's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
16: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
17: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
16: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
17: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
16: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
17: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
18: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
19: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
18: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
20: हे दिस इज सैंडी शाह, ड्राइव यू होम एवरी मंडे टू फ्राइडे बिटवीन 4 and 7 PM विद द बेस्ट ट्यून्स, माइंड गेम्स एंड अ बिट ऑफ ये या वो, ओनली Like a Gold.

0: Kajal's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: Like a goat.
2: Us kids are mesmerized by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery-shelled beast from the undergrowth. But around 1 in 5 young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected.
3: So book your child a free eye test at Specsavers today. Find out more at specsavers.co.uk/kidstests.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
6: 0730099823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823.
7: लंदन जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन लंदन. बॉलीवुड एक्टर आफताब शिव दसानी, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिखा और सोलफुल सिंगर मयूरी पटालिया लाइव हैरो में सैटरडे 3rd अक्टूबर 7 PM हैरो आर्ट सेंटर. टिकट्स अभी बुक कीजिए हैरो आर्ट सेंटर बॉक्स ऑफिस से. मोर इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल 0777-161-5800. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ. आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो. डिपार्चर 5 सप्टेम्बर ना. मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-633. मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 kW बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
12: Ilford, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए.
13: परंपरा भी
14: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है. मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, इल्फोर्ड, IG26HA. कॉल 0755-506015.
15: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
16: Look, there's a snail! And its eyes are sticking out of its antlers. It looks like an ice cream.
17: Ella sees a lot more than just a snail. With free kids' glasses from Specsavers, plus a second pair from £10, they'll see a world of wonders. And you'll see a great deal, too. So book them an appointment at Specsavers today, for free. £10 second pair with free glasses from our £65 and above range.
16: Conditions apply. See online for details.
1: Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208-426-0678
3: वॉटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
4: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
3: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
4: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वॉटफुट कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
2: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
1: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
2: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
1: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
2: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.

0: now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
2: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
1: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
2: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274, बुक योर टेबल टुडे।
3: पल भर के लिए
4: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज। इब्रॉक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर, फीचरिंग फहद यफ, अकॉम्पनीड बाय 7-piece बैंड एंड मनीषा शर्मा। गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए। संडे 6 सितंबर, 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर। टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 25 pounds। बुक टिकट्स एट heroartcenter.com। बॉक्स ऑफिस का नंबर है 02023737161।
5: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स Like a Radio Network.
6: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए, जहां गजल्स मिलती है बॉलीवुड से।
7: शाम चलने लगे, दिल मच।
6: With the legendary Anup Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
8: Dreaming of paradise?
9: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
8: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
9: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
8: At all protected.
10: Dad.
11: What's wrong, beta?
10: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
11: I will run down to the money exchange now.
10: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
11: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
10: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
12: Honslow, ab India ka favorite swad. बिल्कुल आपके पास।
13: बीकानेर वाला परंपरा भी,
14: स्वाद भी। बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट, हाउसलो TW3 1QT। कॉल करें 07487-687-885।
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 kW बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
16: अप नेक्स्ट रवि शर्मा विद द रवि शर्मा शो ऑन Like a Gold across Greater London. This is Kajal on Breakfast.

0: गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। मनोरंजन की दुनिया में स्वागत है प्यारे प्यारे श्रोताओं का। आज शुक्रवार वर्ष 2026 के अगस्त महीने की 14 तारीख और भाई हमारे पाकिस्तानी श्रोताओं के लिए यौमे आजादी का दिन, किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी की सालगिरह भी है और कहीं भाई बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे हमारे हैरो वाले राजराजेश्वर गुरु जी आज संत संसद का समापन समारोह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर में। आपके घर परिवार में भी भाई कोई ऐसा कार्यक्रम है, कोई जन्मदिन या कोई सालगिरह या कुछ और, तो हमारी ओर से शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। माय नेम इज रवि शर्मा, आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून एंड द टाइम नाउ इन ब्रिटिश क्लॉक इज 5 minutes past 10। अब ऐसी जिंदगी को बसर क्या करे कोई और तेरे बगैर शामो सहर क्या करे कोई, मालूम है तू सब्र की ताकीद करेगा और तुझ बेखबर को जाके खबर क्या करे कोई, दीवारों दर पे जिस्म के लिखा है तेरा नाम, इस दिल में अब सिवा तेरे घर क्या करे कोई।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. Forgotten memories refreshed. Leica Gold.

0: क्या बात है, बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत हमने आपको सुनाए। और भाई ये गीत तो कारवां फिल्म से था और लता मंगेशकर व सखियों की आवाज़ों में था। पर साहब क्या कहने, उस फिल्म के सारे ही गीत हिट थे और फिल्म भी हिट थी भाई। जितेंद्र, आशा परेख और अरुणा ईरानी का रोल भी बड़ा दमदार था उस फिल्म में। खैर साहब, फिल्मों की बातें करेंगे, फिल्मी गीतों की, संगीत की बातें भी होंगी, लेकिन आज पाकिस्तान के लोग योम आज़ादी मना रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद देंगे। और साहब बता दूं, 10:30 बजे आप सुनेंगे आज के प्रमुख समाचार, 11 बजे खबरों के बाद होगा आज का चिंतन यानी आज का विचार, दोपहर बाद 1 बजे तक सिलसिला जारी रहेगा, हम गाएंगे, गीत सुनवाएंगे, झूमेंगे और भाई बहुत कुछ सेलिब्रेशन टाइप की चीज़ जो है कार्यक्रम में शामिल करेंगे। कल भारत का स्वतंत्रता दिवस है, आज पाकिस्तान का योम आज़ादी है, बात एक ही है, भाषाओं में अलग अलग टाइटल हो गए हैं। लेकिन एक बात कभी कभी सोचता हूँ मैं, पाकिस्तान योम आज़ादी मनाता है, आज़ादी किससे, भारत से नहीं? क्योंकि क्या पाकिस्तान भारत का गुलाम था? जब था ही नहीं पाकिस्तान पहले उससे, तो फिर भारत का गुलाम कैसे हो सकता है? या फिर अंग्रेजों का गुलाम था? नहीं, योम आज़ादी की बजाय उसे अपना जन्मदिन मनाना नहीं चाहिए, सोचिएगा। वैसे आज 14 अगस्त को एक दिन पहले भारत की स्वतंत्रता से पहले, यानी स्वतंत्र योम आज़ादी भारत के स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले मनाते हैं। वैसे बता दूं आपको कि शुरू में पाकिस्तान में भी योम आज़ादी 15 अगस्त को ही मनाने की ट्रेडिशन शुरू हुई थी, फिर बाद में इसे चेंज करके एक दिन आगे कर लिया गया, शायद ये साबित करने के लिए कि हम तो हर काम में आपसे आगे हैं, योम आज़ादी के सेलिब्रेशन में भी। खैर साहब, मुबारकबाद उनको दें जो आज मना रहे हैं, और बधाई शुभकामनाएँ उनको भी देंगे जो कल मनाएंगे, यानी भारत के लोग। और भाई जो लोग 22 अगस्त को यहाँ यूके में बड़ी धूमधाम से बहुत ज़ोरों से सेलिब्रेट कर रहे हैं, भारतवंशी, भारत के लोग यानी इंडियन डायस्पोरा एंड इंडियन हाई कमीशन मिलकर मना रहे हैं, ऑन 22 अगस्त द इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन इन नवरेट सेंटर प्रिंटिंग हाउस लेन, तो भाई हेज में है ये, और 10 बजे से शाम 4 बजे तक फ्री एंटरटेनमेंट, फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग, फ्री फूड, एवरीथिंग इज फ्री फॉर भारतवंशी, क्योंकि ये भारतवंशियों का प्रोग्राम है, भारतवासियों का भी, लेकिन इमिग्रेंट्स जो हैं बाहर बसे हैं, जो यानी भारतीय प्रवासी या भारतवंशी कहते हैं कि वंश उनका भारत से जुड़ा हुआ है, तो भाई वो 22 अगस्त को है, उसके लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK टुडे ऑफरिंग 128 pounds and 65 pence फॉर 1 pound, 128.65, तो भाई 128.65 रुपये का रेट चल रहा है, दैट इज़ मैक्सिमम, एंड यू कैन ट्रांसफ़र वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाई यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच, T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
4: We're not having that, are we?
3: No. Oi, hear that? It's water and cans.
5: And fix those drips and drops.
6: And take shorter showers, yeah?
5: Because when we work together, it all adds up.
6: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
7: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
8: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
7: Mega blockbuster Dhurandhar on Star Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.

0: टक्कर माइक्रोवेव।
1: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में। इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर। आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए। 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208-426-0678।
3: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं जिंदगी भर याद रह जाती हैं और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th ऑफ सितंबर एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन। अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956 278228। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड.
1: Are we there yet?
2: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
3: Relax, I've booked the Uber already.
2: How? My roaming isn't even working yet.
3: I switched to Simsy before we left London.
2: Simsy? Since when are you the tech expert?
3: Since I decided I want a stress-free holiday.
4: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
0: T's and C's apply. You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
5: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है.
6: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी.
7: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB. कॉल 07795181001.
8: बी पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग.
0: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस. अ वंस इन अ लाइफ टाइम spiritual journey.
8: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
0: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
8: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: September mahina ma hasano double dhamako fari aavi rahyo che.
9: Tame bata purush ho to lagne lagne kuvara ho chho.
10: E tame striyo amne ache ne purusho nam khota hogovanu ban.
5: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लेने आवी रहा छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान मा. हवे राइसली पॉटर्स बार इलफर्ड साउथ लंडन अने ल्यूटन मा. टिकिट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931534270. नाटक नु नाम याद रखजो
11: हालो पटेल भाई जान मा.
12: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free, butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
13: Chupke, chupke, raat din, aansu.
14: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
15: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
0: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: वेरी गुड मॉर्निंग लाइका रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। आज की खास खबरों में भाई, पहले तो नाइजल फराज पहुंच गए हैं पार्लियामेंट में, फिर से चुनाव लड़कर के कामयाब होकर के, और एक सशक्त आवाज से लोगों ने बधाई दे रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि अब क्या कुछ होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनके आगमन से। एक खबर ये भी है कि भारत समेत 40 से ज्यादा मुल्कों ने चीन को टैरिफ से बचाने में मदद की है, उसके खिलाफ जो टैरिफ लगाया जा रहा था। खड़गे के शुद्धिकरण पर मायावती ने जताई नाराजगी, मनन मिश्रा के फैसले पर सीजीआई हुए नाराज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अश्विन ने सरफराज की टीम में भूमिका को लेकर मैनेजमेंट से सवाल पूछे। भाई ये अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए सवाल है, जैसे ये क्रिकेट के बारे में था। लेकिन सबसे पहले ये खबर कि शहबाज शरीफ के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कांग्रेस का एक बयान आया। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी से उसका जवाब मांगा है। पवन खेड़ा ने कहा कि शहबाज शरीफ का जो बयान आया है वो बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद 100 से ज्यादा बार कह चुके हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, मैंने भारत को टेल ऑफ किया। उन्होंने जो भी कहा आपने सुना है। पवन खेड़ा के मुताबिक, ये पवन खेड़ा भाई कांग्रेस के जो है स्पोक्स पर्सन भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं वो, पवन खेड़ा के मुताबिक शहबाज शरीफ भी वही बोल रहे हैं और ट्रंप को शुक्रिया कह रहे हैं। राहुल जी ने संसद में मोदी जी को मौका दिया कि आप खड़े होकर बोल दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, और ये कांग्रेस की बहुत देर से कोशिश चल रही है कि मोदी जी ये कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इस पर एक यूं कहिए कि भाई सवाल बना हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है, खामोशी बनी हुई है। नांदेड़ में घटना घटी है जिसका भी चर्चा है भारत में। नांदेड़ में सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ है और उस हमले के बाद उनका बयान आया है। पंजाब के फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल ने अपने ऊपर हुए अटैक पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद पंजाब में हालात को कंट्रोल में लेना और शांति भंग करना नहीं है, जिसकी अनुमति मैं शिरोमणि अकाली दल और अध्यक्ष के तौर पर कभी नहीं दूंगा। मेरे पिता ने भी इसकी इजाजत नहीं दी थी। दोनों बार उन्होंने मुझ पर सबसे पवित्र स्थानों पर हमला किया। सिखों का धार्मिक स्थान है नांदेड़। कहते हैं मैं कभी डरा नहीं और मैं अब भी नहीं डरता। जिनके ऊपर गुरु की कृपा का हाथ होता है उन्हें कोई आंच नहीं आ सकती। अटैक के बाद ये सुखबीर सिंह बादल का बयान आया। आइए अब इंटरनेशनल खबरों में देखें। अमेरिका का दावा, भारत समेत 40 से ज्यादा मुल्कों ने चीन को टैरिफ से बचाने में मदद की है, अमेरिका कह रहा है। व्हाइट हाउस ने कल जारी एक रिपोर्ट में दावा किया कि भारत समेत 40 से ज्यादा कंट्रीज ने चीन को अमेरिकी टैरिफ से बचने में मदद की है, जिसके लिए चीनी सामान को ऐसे देशों के रास्ते अमेरिका भेजा गया जहां इंपोर्ट ड्यूटी कम है। रिपोर्ट में कनाडा, भारत, मेक्सिको, जापान और साउथ कोरिया समेत कई देशों का नाम लिया गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक इन मुल्कों के जरिए चीन ने अरबों डॉलर के अमेरिकी टैरिफ से बचने की कोशिश की है। भारत से आने वाली खबरों में खड़के के शुद्धिकरण, पवित्रीकरण भाई, उसको पवित्र बनाने का जो प्रोसेस, ये एक खबर काफी चर्चा में है। खड़गे के शुद्धिकरण पर मायावती ने नाराजगी जताई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद मंच के कथित शुद्धिकरण को लेकर, मंच की बात है, स्टेज की यानी जहां वो काम करके गए हैं तो उसको पवित्र बनाइए, लेकर के बीएसपी चीफ मायावती ने कड़ा रिएक्शन दिया है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार को बिना देरी किए ऐसे जातिवादी और सामंती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है या रिक्वेस्ट की है। बीजेपी ने नालसार विवाद के बीच बीसीआई अध्यक्ष मनन मिश्रा का इस्तीफा मांगा है। हैदराबाद की नालसार लॉ यूनिवर्सिटी के 2026 के बैच के ग्रेजुएट्स की एनरोलमेंट को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। और इसी बीच सीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास ने बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा पर निशाना साधा है। ये सीजेपी बता दें क्या है, कॉकरेच जनता पार्टी। सौरभ दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट को करते हुए लिखते हुए उन्होंने लिखा है कि मनन मिश्रा को लेकर जवाबदेही तय करने की जरूरत है। उत्तराखंड सुरंग हादसा, जख्मी व्यक्ति ने बताया कि टनल के भीतर क्या हुआ, टनल में एक हादसा हुआ। उत्तराखंड के चमोली जिले में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बनने वाली यानी अंडर कंस्ट्रक्शन सुरंग में पानी और मलबा घुसने से 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 13 लोग जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। और बाहर निकाले एक व्यक्ति ने बताया कि हालत बेहद खतरनाक थी और किसी को भी संभलने तक का वहां मौका नहीं मिला। मिथुन चक्रवर्ती का बंगाल सरकार पर तंज, कहते मुझे छोटा कलाकार समझते हैं इसलिए। भाई मिथुन तो बंगाल सरकार के समर्थक रहे हैं, वो तो बीजेपी के ही आदमी हैं। कोलकाता में महान बंगाली अभिनेता उत्तम कुमार की जन्म शताब्दी के समारोह को लेकर के सीएम शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल फिल्म फेस्टिवल में न्योता न मिलने पर नाराजगी जताई है। नाराज बनना बनता है उनका नाराज होना। भाई बंगाल फिल्म फेस्टिवल हो और आप मिथुन को इग्नोर करें, नहीं चलेगा। एक और इंटरनेशनल खबर, पूर्वी जापान में रिकॉर्ड बारिश से भारी नुकसान हुआ है, 4 लोगों की मौत और हजारों मुसाफिर एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। जापान के चिंबा प्रांत में रिकॉर्ड बारिश के चलते 4 लोगों की मौत हो गई है। और साहब आज पाकिस्तान अपना यौम आज़ादी मना रहा है, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को समझौते को लेकर भारत को एक सीधी वार्निंग दे डाली है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद उसकी रेड लाइन है और अगर भारत ने अपना रुख नहीं बदला तो उसे सीधा जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद में कल यादगार फतेह के ओपनिंग सेलिब्रेशन में बोलते हुए शहबाज शरीफ ने भारत की ओर से सिंधु जल समझौते को एक तरफा तौर पर सस्पेंड किए जाने पर उन्होंने टिप्पणी की है। पाकिस्तानी वजीर आजम ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने युद्ध रुकवाने में अपनी भूमिका अदा की। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप ने पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में जो रोल अदा किया है उससे लाखों लोगों की जान बचाई है उन्होंने। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: This is like a gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
3: आइए समाचारों के बाद अब लौट आते हैं संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं आपको किशोर कुमार और आशा भोसले की दमदार आवाजें।
4: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
2: Holiday breaks are brought to you by South All Travel.
3: और मेरा भाइयों, साउथ हॉल ट्रेवल का वो मशवरा, साउथ हॉल ट्रेवल का वो संदेश के वो सारी पाबंदियाँ अब उठा ली गई हैं और खुला आमंत्रण है दुबई ट्रेवल करने के लिए। दुबई के लिए भाई वो न्योता दे रहे हैं, कॉल साउथ हॉल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पिटेटिव दुबई डील्स ऑन 02085748410।
2: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
4: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
5: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
6: We're not having that, are we?
7: No.
8: Oi, hear that? It's water and cans.
9: And fix those drips and drops.
10: And take shorter showers, yeah?
11: Because when we work together,
12: it all adds up.
13: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
14: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
15: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
14: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
15: विजिट TravelHubWorld.com।
16: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
17: Stardom Media proudly presents Janmashtami Bhajan Jamming with the soulful Nandlal Changa.
18: कृष्णना जन्मनो आनंद उत्सव एक रात एक अनुभव।
17: 5th September at Wembley, 6th September at Crawley. Tickets only £25. For tickets booking, visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or StardomMediaLTD.com.
18: Stall and sponsorship mate call 07940924667. Exclusive radio partner, Laika Radio Network. Start.

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: London, Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in London. Bollywood actor Aftab Shivdasani. Playback singer Aman Trikha. और सोलफुल सिंगर मयूरी पटालिया लाइव हैरो में सैटरडे 3 अक्टूबर 7 PM हैरो आर्ट सेंटर. टिकट्स अभी बुक कीजिए हैरो आर्ट सेंटर बॉक्स ऑफिस से. मोर इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल 0777-161-5800. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
3: लाइका रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रागासन. Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
4: Hi, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए.

0: उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में भाई और साथियों की आवाज़ों में ये गीत हमने आज नाम किया है पाकिस्तान से जो हमारे श्रोता कई तो पाकिस्तान में बैठ के हमारे प्रोग्राम सुनते हैं और कई भाई यहाँ यूरोप भर में जहाँ भी सुन रहे हैं। हैप्पी योम आज़ादी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान फूले फले, तरक्की की भाई राह पर चले, ये हमारी दुआ है, सबकी दुआ है। Happy Independence Day to Pakistani listeners.
1: Wishing our listeners a happy Pakistan Independence Day.
2: Ye hai Laika Gold.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Let me tell you the rates LemFi ke bharatiya currency mein 1 pound ke badle they are giving 129.07 rupees. Pakistani 375.55 rupees. Sri Lankan rupee 450.54. Bangladeshi take 166.02 and Afghani 88.51.
2: Laika Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Laika. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Sone ka bhav, the gold is trading at the rate of 103.61 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: This part of the show is brought to you by Star Plus.
5: Previously known as Utsav Plus.
4: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410। साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
9: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
10: Dad,
11: what's wrong, beta?
10: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
11: I will run down to the money exchange now.
10: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
11: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
10: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
12: Weddings, celebrations, corporate events, ragas and sab kuch efficiently handle करते हैं। Perfect location ढूंढने से लेकर incredible themes design करने तक, world class cuisine से हर छोटी बड़ी requirement तक manage करते हैं। 30 साल से ज्यादा का experience, हर event को खास बनाएं। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और visit ragasun.com। location, design, management या catering, Ragasun।
13: after a sold-out show at the Royal Albert Hall. Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
12: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापूजी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
14: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
15: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
14: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
17: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम। पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक।
18: तुम तो तेरे आशिक है सदियों पुरा।
17: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th अगस्त हेज एंड हाई स्कूल हैरो, 30th अगस्त वुडमिंस्टर स्कूल साउथ लंदन। डिनर फ्रॉम 5 PM, शो स्टार्ट्स एट 7 PM। फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947।
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

फरमाइश सीधे हरियाणा से आई है। तो भाई ये सुनिए गीता ज्ञान और कुरुक्षेत्र का इनविटेशन जो लेकर चलेगा हमें खबरों तक।

0: मीनाक्षी पांचाल और सहेलियों की आवाजों में भाई ये गीत खबरों तक ले आया है। और खबरों में एक खबर जो बहुत परेशान कर रही है, कोई माँ अपनी ही संतान की हत्या कर सकती है। एक माँ को अपनी बेटी का हेयर ड्रायर के द्वारा कत्ल करने के अपराध में 6 साल की सजा सुनाई गई है। लेट्स हियर द न्यूज।
1: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
2: The top stories. A mother who killed her baby daughter using a hairdryer has been jailed for 6 years. Courtney Gartshaw from Peterhead in Aberdeenshire caused significant and sustained heat to 3-month-old Dahlia Rose's head and body. A man who was jailed for life 23 years ago for murdering his estranged wife will remain in prison, reversing the parole board's decision to release him. Glyn Razzell killed his partner Linda in Swindon in 2002, but her body's never been found. The parliamentary watchdogs resumed its investigation into Nigel Farage following his victory in the Clacton by-election. It's looking into the financial support he received before the general election. Labour Party Chair Bridget Phillipson says Mr Farage can now settle questions about his donations once and for all.
3: Nigel Farage has obviously spent the summer chasing a bin around Clacton. We've got the result now, and now that result is clear. Nigel Farage can set out to the public exactly what's been going on in recent weeks and months.
2: More than 1 million people have signed a petition to stop PC Andrew Harper's killers from being released early from prison. There's concern the two men could be freed under government plans to ease overcrowding in jails. 2 people are in hospital with serious injuries after a train derailed in East Sussex yesterday. Investigators are looking at whether high temperatures played a part in the incident, which happened just before 4 o'clock near Lewes Station. Images from the scene showed some carriages tipped onto their side. Rob Bradley was on the train with his 6-year-old daughter, Mabel.
4: It was incredibly scary when it was actually happening. There was a lot of loud bangs, a lot of movement in the train. When we realised something was going wrong, the train started rocking from side to side and then vertically lifted off the track.
2: And Aston Villa's European Cup winning goalkeeper Jimmy Rimmer has died aged 78. The club says he was one of the finest goalkeepers of his generation. From Sky News, I'm Kat Suave.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group.
5: Want to know the one word that keeps people living young? It's yes. Yes to seeing your mates more. Yes to that last minute gig ticket. And now Saya is giving you another reason to say yes. For a limited time, get an extra £500 on top of the £2,750 towards your finance deposit on a Saya Ibiza. Yes, living young just got £500 easier. Offer ends 14th of September. Search Saya and book your test drive online. Selected stock only. 6.9% APR representative with solutions PCP. Indemnities may be required. Saya Finance.
1: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: Very good morning, bhai. Aaj ke mausam mein it will be dry, sunny and hot through some areas of cloudy may develop later in the afternoon and evening. और कल की बात ना कीजिएगा भाई। कल मैं जब घर पहुंचा, एक तो इतना समय लगता है कि ट्रेन रेलगाड़ियों की आवाजाही में रुकावट है। कल घर के सामने, मेरे ठीक सामने आग का धुआं बता रहा था कि कितनी गर्मी, जिससे आग लग गई। तो खैर साहब, आज जो है उतनी गर्मी नहीं है कल जितनी, लेकिन कम भी नहीं है बहुत ज़्यादा। आज मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस, हल्की हवाएं भी चलेंगी।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
6: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: और बहनों भाइयों, कल के मौसम की बात करते हुए तो जो है ना, दिल धक धक करने लगता है। अनेक जगहों से ये खबरें आई और यूँ समझिए कि फायर ब्रिगेड की हेल्प के लिए कितनी कॉल्स की गईं, कहाँ कहाँ। अब भाई, सूरज की गर्मी, तपती हुई धरती और उठता हुआ धुआं और जलती हुई आग ने डरा के रख दिया। मैं जब घर पहुंचा तो भाई वहां पर सड़क पर एंट्री नहीं करने दे रही थी पुलिस, और मैंने देखा कि ठीक मेरे घर के सामने से धुएं का गुब्बार निकल रहा था, और वो ये फैसला कर पाना मुश्किल था कि ये मेरे घर से निकल रहा है या आस पड़ोस से या सामने वाली जगह से। और सामने हमारे एक भाई पार्क है, एक बॉलिंग ग्राउंड है, बड़ा खूबसूरत होता था किसी समय। आप उसकी ओरिजिनल मूर्त देखना चाहें तो हमने एक फिल्मी गीत की शूटिंग की थी वहाँ, और वो धारे जब पहुँचा, अगर आप इस टाइटल से यूट्यूब में देखेंगे तो आपको वो दिखाई देगा कितना खूबसूरत वो ग्राउंड है। था है कहाँ, जल गया कल भाई वो था। और उसमें हमने शूट किया, मेरे ऊपर पिक्चराइज है गाना, वो देखेंगे आप, रवि शर्मा को भी देखेंगे, उस खूबसूरती को भी देखेंगे। लेकिन कल साहब उस धुएं के गुब्बार में वो आग लगी थी हमारे घर के बिल्कुल सामने वाले बॉलिंग ग्राउंड में, सारी घास सूख चुकी थी और पत्ते झड़ झड़ के भाई सूखे पत्ते फैले थे उसमें, आग लगी तो फैल गई और इतना धुआं, फिर फायर ब्रिगेड पुलिस और साहब वो ही नाकाबंदी, आने जाने के लिए रास्ता रोक दिया गया। तो कुल मिलाकर के सावधान करने को जी चाहता है कि वो बीड़ी सिगरेट आप फेंक देते ना, आजकल थोड़ा एक्स्ट्रा सावधानी बरतिए भाई, पत्ते बड़ी जल्दी आग पकड़ते हैं, सूखे पत्ते, घास और वो जो क्या होता अपना भाई ये जो आग से खेलने वाला काम, खैर आग से खेलने वाला नहीं है, है तो बारबेक्यू जो होता है और उसमें जो पोर्टेबल होते हैं ना, वो हल्के से भाई एक बार इस्तेमाल की और फिर उनको डंप कर दिया, फेंक दिया, बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो ये संदेश देते हुए कि ये दो चार दिन की जो गर्मी और है इससे निपट लीजिए, अच्छा मौसम भी आएगा।

वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। और बहन भाइयों, इस दौर में हम आपका स्वागत चिंतन से किया करते हैं। थॉट फॉर द डे यानी आज का विचार, और आज का इतिहास, आज का दिन, आज की महत्व पर भी हम चर्चा करते हैं। तो आज का विचार यानी चिंतन प्रस्तुत है। आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं हमारे मित्र और हमारे भाई रेगुलर कंट्रीब्यूटर श्री प्रमोद कैट का भेजा आलेख। एक मीठा सा निमंत्रण भी आपने भेजा है। कहते हैं कि हमारे यहां स्वामी उमाकांतानंद जी आ रहे हैं, उनका प्रवचन और उनके प्रवचनों में बड़ी प्रैक्टिकल बातें होती, तो आप आइएगा मंगलवार को दोपहर में 12 से 2 के बीच। मैं कोशिश करूंगा कैट साहब, आप इन बुला रहे हैं हमें लक्ष्मी नारायण मंदिर हाउंसलो में जो नेविल क्लोज में है। लेकिन आज का संदेश आपका बड़ा मार्मिक है। आज के चिंतन में आप लिख रहे हैं कि ठीक है, सब पाकिस्तानियों को उनको यौम आजादी की मुबारकबाद दीजिए, लेकिन आज के दिन भारत में अपने पड़ोस में यौम आजादी की मुबारकबाद देते हुए इस बात की भी याद दिलाई जा रही है कि 14 अगस्त का जो ऐतिहासिक भाई महत्व है, बड़ा भावनात्मक दिन था। ये आजादी की घोषणा होने वाली थी भारत के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान अस्तित्व में आया। ऐसा तो कोई बात नहीं भाई, बंटवारे होते हैं, सुख दुख से अनजान कभी हमसाए नहीं होते, और घर बंटने से अपने कभी पराए नहीं होते। लेकिन यहां तो साहब पराए हुए, और इतने पराए हुए कि खून की नदियां बही। 14 अगस्त 1947 को इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक दिन था। इस दिन

14 और 15 अगस्त की मिडनाइट में भारत स्वतंत्र हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी ऐतिहासिक रात अपना प्रसिद्ध ट्राइस्ट विद्रोह डेस्टिनी भाषण दिया, स्पीच दी। मोहम्मद अली जिन्ना ने जहां गवर्नर जनरल के रूप में अपनी स्पीच में यह वादा दोहराया कि पाकिस्तान में सभी धर्मों को, सभी कम्युनिटीज को फलने फूलने का मौका दिया जाएगा, बराबरी के अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज की तादाद कितनी तेजी से कम हुई वहां, और तभी से शुरू हो गई जब बंटवारा हुआ तो कितने लोग वहां से उखड़कर, अपनों से बिछड़कर, घर बार प्रॉपर्टी से उजड़कर कैसे सीमा पार करके निकले हैं। यानी आज के दिन आजादी की खुशी नहीं बल्कि विभाजन की पीड़ा, बंटवारे का दर्द याद करने का दिन भी है। 1947 में बंटवारे के कारण करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, बड़े पैमाने पर वॉयलेंस हुई। चिंतन, इसी याद में भारत सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, मुश्किल लगे ये शब्द बता दे, विभाजन का मतलब बंटवारा, विभीषिका का मतलब दर्द, प्रकोप। बंटवारे का जो हॉरर, उसकी याद करने का दिन कैसे भूल सकते हैं भाई, कितने लोग मरे, कितना खून बहा, कितने उजड़े, कितने रेप हुए, लूटपाट हुई। 2021 में इस रूप में मनाने का ऐलान भारत में हुआ कि बंटवारे को कैसे भूल सकते हैं। इसका उद्देश्य उन लोगों के संघर्ष, उनके दर्द और उनके बलिदान को याद कर रहा है जो इस बंटवारे में विक्टिम बने। आज का संदेश यह है कि भाई इतिहास को केवल विजय के रूप में नहीं बल्कि उसकी पीड़ा की सीख लेने की भी जरूरत है, उस दर्द से कुछ सीखने की जरूरत है कि सुख दुख से अनजान कभी हमसाए नहीं होते, घर बटने से अपने कभी पराए नहीं होते। पर यहां तो घर बटे ही नहीं, घर लूटे और अपने पराए नहीं हुए, अपने दुश्मन बन गए। अब बहन भाइयों, हमारे बड़े अच्छे मित्र केतन अडानी वो भी भेजते हैं एक स्मृति, और भाई और भी कई लोगों ने उस जमाने को, उस दौर को, उस दर्द को याद किया है। हमारे हरियाणा में बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए और उन्होंने पाकिस्तान में हरियाणा बसा रखा है, वही बोली, वही खाना पीना, वही राग रंग रागनियां, लेकिन साहब उजड़ के तो जाना पड़ा। अब आपको बता दें कि कई इलाके ऐसे थे हरियाणा में जहां मुसलमान जाना नहीं चाहते थे, और वहां के गांव के लोग, ये गांव की बात कर रहा हूं मैं, शहर की नहीं, शहरों में अटैक हो रहे थे पाकिस्तान में हिंदुओं पर, सिखों पर और हिंदुस्तान में मुसलमानों पर। लेकिन गांव में इतने सालों से लोग मिलजुल के रहते थे, वहां तो मिलिट्री के ट्रक आते और कहते भाई जिसको पाकिस्तान जाना है तो हम सुरक्षित पहुंचा रहे हैं, तो ट्रकों में भर भर के लोगों को ले जा रहे थे। पर लोग जाते हुए रो रहे थे, गले लिपट लिपट के विदाई ले रहे थे, और गांव के लोग उन्हें विदा कर रहे थे जैसे अपनों को कोई दूर भाई काम के लिए, नौकरी के लिए भेज रहा है, हमेशा के लिए जा रहे हैं, ये जानकर तकलीफ उनकी और बढ़ रही थी। लेकिन बहनों भाइयों, खून खराबा भी हो रहा था, रेलगाड़ियां लाशों से अटी हुई आ रही थी पाकिस्तान की ओर से, इधर से भी खून खराबा, तो बदले की भावना से जो है वॉयलेंस खूब जोर पकड़ रही थी। अब सही संख्या का तो अंदाज लगाना मुश्किल है, लेकिन मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड। अब आप ही बताइए, सेलिब्रेट करते हुए इन बातों को कैसे भुला सकते हैं हम? इतिहास से संकल्प लें कि नफरत और वॉयलेंस को समाज में जगह नहीं देंगे, जाति, भाषा, क्षेत्र या किसी भी भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता को सम्मान देंगे।

भाई लोग कहते हैं कि धर्म का काम है जोड़ना, धर्म का काम है लोगों को सुखी बनाना, पर धर्म का काम तोड़ना, लड़ना, नफरत करना, मिटना और मिटाना, ये कब से हो गया? और ये ज्यादा देखने में आ रहा है। इसी बंटवारे के दौर गांव की घटना है भाई। एक बुढ़िया अड़ गई, बोली मैं तो पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। कहा अम्मा यहां पर अटैक हो रहे हैं, किसी ने अगर आकर के हमला किया हमें बहुत दुख होगा। बोली यहां पैदा हुई हूं, यहीं मरूंगी, यहीं पर मेरी कब्र खुदेगी, मेरा मुल्क है, मेरा वतन है, नहीं जाऊंगी। गांव वालों ने बहुत समझाया, हाथ जोड़े पैर पकड़े, क्योंकि बहुत प्यार था, सम्मान था। लो सब लोग नहीं बटना चाहते थे, नहीं कटना चाहते थे, एक दूसरे से नहीं हटना चाहते थे, उस रिश्ते से जो बरसों से चला आ रहा था। बुढ़िया ने कहा कुछ भी कर लो नहीं जाऊंगी। तो गांव वालों ने कहा अगर बाहर से कोई आके अटैक करता है, गांव में तो सब आपकी इज्जत करते हैं माई, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन रात को हमले होते थे, लोग पहरा देते थे गांव के लोग कि मुसलमानों को कोई तकलीफ ना, उन पर कोई अटैक ना करे, गांव में थे। तो भाई आर्य समाज के कुछ लोगों ने कहा माई ऐसा करते हैं, अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहना कि आप हिंदू हैं, और ऐसा करते हैं कि गांव के बाहर एक मंदिर था, मंदिर में उनके लिए रहने की जगह बनाई, और भाई उसमें एक प्याऊ थी, गर्मी के दिनों में पानी पिलाने का काम उसे दे दिया, तनख्वाह बांध दी, और कहा कि माई मंदिर है, कोई आपके पास आए तो कहना मैं हिंदू, और हम बना देते हैं हिंदू। उन्होंने भाई जल, गंगा जल का इस्तेमाल किया, कुछ मंत्र बोले और कहा माई अब तुम हिंदू हो, कोई अटैक नहीं करेगा आप पर, कह देना कि आप हिंदू हैं। अब साहब लोग पानी पीने लगे, माई रह गई, पाकिस्तान अपनी जगह, हिंदुस्तान अपनी जगह, बस गए। एक बार एक पंडित जी किसी और मंदिर से वहां आए, और गर्मी में प्यास उन्हें लगी थी, वहां से गुजरते हुए मंदिर के सामने प्याऊ थी, मंदिर वालों की तरफ से ही थी, पीने के लिए रुके। तिलकधारी पंडित जी ने पानी पिया और जब देखा कि उनका पहनावा और उनकी चाल ढाल सब वो मुसलमान वाली थी बुढ़िया की, तो कहते अरे माता जी मैंने आपके हाथ से पानी पिया, आप तो मुसलमान हैं। कहती नहीं नहीं नहीं पंडित जी घबराओ मत, मैं हिंदू हूं। जैसा माई को बताया गया था कि भाई आप हिंदू हो चुकी हैं, चिंता मत करें, मंदिर में कोई यहां पर आपको तकलीफ नहीं होगी। तो भाई उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं आप मुसलमान हैं, सच बताओ आपके हाथ से मैंने पानी पिया है, आपका खान पान जो है वो, क्योंकि पंडित लोग जो है किसी ऐसे व्यक्ति से भी पानी पीना अपराध मानते हैं जो भाई मांसाहारी हो जो। तो माई ने कहा नहीं मैं कसम खाती हूँ मैं हिंदू हूँ। ओके अबे यकीन नहीं है, अल्लाह कसम मैं हिंदू हूँ। पंडित जी चौंके, क्या कह रही हो? अरे हाँ कह रही हूँ, खुदा कसम हिंदू हूँ। मानते नहीं हो? अब बहनों भाइयों पंडित जी का शक और विश्वास में बदल गया कि आप मुसलमान। तो माई ने समझाया देख बेटा अल्लाह कसम खाऊं या राम कसम खाऊं, बरसों से अल्लाह कसम खाती आ रही हूं इसलिए आदत पड़ गई है, राम कसम भी खा लूं मुझे कोई फर्क नहीं, क्योंकि मुझे पता है उसके नाम अलग हो सकते हैं, है वो एक ही, कहीं बन बैठा साध कहीं लेता है समाध, कहीं जोगी कहीं नाद कहीं जंगम झमेला है, कहीं करता है राज कहीं फिरता मोहताज, कहीं ब्याह कहीं काज कहीं दूल्हा अलबेला है। वो है तो अपार वेद पायो नहीं पार, वो है तो अकेला पर अनेक खेल खेला है, वो एक है उसके नाम कहीं है उसके रंग रूप कहीं है। बेटा सब अल्लाह को मानते हैं पर अल्लाह की नहीं मानते, सब वाहिगुरु को मानते हैं पर वाहिगुरु की नहीं मानते, कि मानुष की जात सब एक ही पहचान, वो अव्वल अल्लाह रूप बनाया भाई, वो राम को मानते हैं राम की नहीं मानते।

लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक महासागर है वो हिंदुस्तान, वो भारत, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। हम एक थे, हम एक हैं। इतिहास में झांक कर देखोगे तो अपनी नसों में वही खून पाओगे जो हमारी नसों में दौड़ रहा है।

जमी बट गई, आसमान बट गया, खुदा बट गया, भगवान बट गया। हिंदुस्तान बट गया, पाकिस्तान भी बट गया, उसमें से बांग्लादेश बन गया। पर शास्त्र कहते हैं, धर्म कहता है, भारतीय संस्कृति कहती है कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक महासागर है वो भारतीय सबकॉन्टिनेंट, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए, बंटवारा दुखदाई होता है। पूछो उनसे जो अपने देश से उखड़े, अपने परिवारों से बिछड़े, जो अपने घरों से उजड़े। ये आजादी का महोत्सव बंटवारे की त्रासदी भी है, संकेत कर दिया है, समझ जाइए। आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए भाई आलेख हमारे प्रमोद कैट साहब ने भिजवाया हौसलो मंदिर से, केतन अडानी साहब ने भिजवाया हमें नवनेट सेंटर से, इससे एक संदेश, संघो शक्ति कलो यज्ञ। और ये शेर भाई मैंने लिखा था कभी के सुख दुख में, सुख दुख से अनजान कभी हमसाए नहीं होते, और घर बटने से अपने कभी पराए नहीं होते। जोड़ने की बात करते हैं, दौड़ने और काटने की नहीं, बांटने की नहीं। आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके साथ गीत हमने महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में सुनवाया, आज का चिंतन अब समाप्त होता है।

0: मेरे भाइयों, याद दिला दूं आपको, आज पाकिस्तान में योम आजादी मनाया जा रहा है, कल भारत स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। लेकिन केतन अडानी हमें याद दिलाते हैं कि 22 अगस्त को भारतवंशी भाई 15-20 हजार तक लोग इकट्ठे होते हैं नवनेट सेंटर में, विशाल कार पार्क, तो फ्री पार्किंग, विशाल प्रांगण, फ्री एंट्री, फ्री एंटरटेनमेंट, फ्री फूड, सब कुछ फ्री, क्योंकि भारतवंशी मिल करके आयोजित करते हैं ये कार्यक्रम, इंडियन डायस्पोरा एंड इंडियन हाई कमीशन। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भाई ये कार्यक्रम जो है वीकेंड पर कर रहे हैं वो लोग 16 अगस्त को। आज हमें फिर याद दिला रहे हैं हमारे राजेश्वर गुरुजी के, हम संत संसद का समापन कर रहे हैं, यानी आज समाप्त हो रही है ये संसद, जो विश्व में प्रेम और भाईचारा फैलाने के लिए, सद्भावना के प्रचार प्रसार के लिए भ्रमण कर रहे हैं। छठी संत संसद चल रही है और आज हेरो लेजर सेंटर के बायरन हॉल में उसका समापन शाम को हो रहा है। भाई सबको बधाई शुभकामनाएं दोहराते हुए और बंटवारे के दर्द की भी याद दिलाते हुए आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. भाई याद दिला रहे हैं आज का रेट, एक पाउंड के बदले भारतीय करेंसी में वो रुपयों में दे रहे हैं 128.65 रुपीस, 128 रुपये और 65 पैसे का रेट चल रहा है। यू वांट टू सेंड मनी टू योर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, राखी पर बहनों को भेजना चाहते हैं पैसे, गो टू एनी ब्रांच, यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप, TNC अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है Like a Gold. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Star Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.

0: उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, क्या पर्सनैलिटी थी भाई, क्या आवाज़, क्या अंदाज था खान साहब का। और बड़े फ़ख्र से मैं लोगों को बताता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और वो तस्वीरें मैंने सजा के रखी हैं अपनी एल्बम में भाई, खान साहब के साथ स्टेज पर। पर मैं अकेला नहीं, उनके प्रशंसक, उनके भाई चाहने वाले नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला और कितने लोग वहाँ पर उस कार्यक्रम में मौजूद थे। मैं तो सर चलो काम कर रहा था, स्टेज कंडक्ट कर रहा था, लेकिन ये सिर्फ सुनने के लिए आए थे, नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला। like
1: like gold. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Mamster Golgappe at the Golgappian Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: 24 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
3: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Cool. London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे
4: कूल म्यूजिक फॉर अ सुपर हॉट समर टाइम ऑन लाइका गोल्ड.

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewelry from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
3: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
4: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
5: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
4: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
5: रिच ऑथेंटिक

0: Book now, visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Dard se purana rishta hai mera.
2: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Awara Bana 2.
1: Usne mujhe chua, par apnaya nahi. To phir
2: Now in cinemas. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
3: Ponslow, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास.
4: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी.
5: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ. आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो TW3 1QT. कॉल करे 07487-687-885.
6: Have you noticed the way fans shout at football matches?
7: Oh, wake up!
6: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish.
8: Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
9: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
10: और बहनों भाइयों, आप जानते हैं कि आर्टिस्ट ऑफ द वीक कौन है इस सप्ताह? वो महान व्यक्तित्व शारद पुत्री, कंठ कोकिला, वन एंड ओनली लता मंगेशकर. और वेल, लता जी का जन्मदिन पड़ता था उस साल, उनकी डेथ से पहले जो उनका जन्मदिन था, तो उन्हें एक फोन आया और फोन करने वाले ने कहा कि मैं विदेश में हूं लता जी, पर आपका जन्मदिन नहीं भूला हूं. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई. कौन था ये व्यक्ति भाई जो विदेश जाकर भी उनको भूला नहीं? इतने जरूरी काम होते हैं उस इंसान के पास, और वो विदेश यात्रा पर था. वो थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. देखिए साहब, बड़े बड़े लोगों को तो मौका मिल जाता है लता जी से बात करने का, साक्षात करने का उन्हें, लेकिन इस छोटे से व्यक्ति को भी आज से 36 बरस पहले बहन भाइयों, इंडियन हाई कमीशन की बिल्डिंग में एक कमरे में मैं और लता जी आमने सामने बैठे थे, और थोड़ी देर के लिए मैं नर्वस था, लेकिन उन्होंने ही हिम्मत बनाई और जब मैंने एक के बाद एक सवाल पूछे, लता मंगेशकर जी क्या कहूँ उनकी आवाज़ को, उनके अंदाज को, उनकी उपस्थिति को, उनकी पर्सनैलिटी को. और मैंने एक सवाल पूछा था कि लता जी जब आप मंच पर गाती हैं तो जैसे और कलाकार हैं वो परफॉर्म भी करते हैं, पर आप तो खड़ी रहती हैं, कभी कभी तो आप इतनी खो जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं जैसे आप गाने रही हैं, ध्यान कर रही हैं, पूजा कर रही हैं. तो लता जी ने कहा, बिल्कुल, मैं जब गाती हूँ तो मेरे लिए वो पूजा के समान ही होता है. भाई मुझे याद है इंटरव्यू की एक एक बात, लेकिन उनकी आवाज़ में मैंने रिकॉर्डिंग ढूंढ कर निकाली है, कभी सुनवाएंगे. पर लता मंगेशकर भाई पूरे साजबाज के साथ स्टूडियो में गाती थी और बात है, लेकिन वो अकेली अपनी आवाज़ गुनगुनाएं तो भी ऐसा लगता था कि पूरा एटमॉस्फेयर गा रहा है.

कोयल सी कूकती है, प्रकृति भी रुकती है, सारी दुनिया जिस स्वर के सामने झुकती है वो है लता मंगेशकर, रहेंगी हमेशा लता मंगेशकर। और बहनों भाइयों, लता जी की आवाज़ में तो आंख बंद करके आप किसी भी गाने पर टिक करें ना तो वो गाना जो है वो स्पेशल हो जाता है। अब इस गाने में उन्होंने सवाल पूछा है कि लोग प्यार करते हैं फिर आंसू बहाते हैं और कहते हैं कि कह दो जहां में कोई ना करे प्यार, ऐसा क्यों करते हैं? ये वो लड्डू है जिसे जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो ललचाए, जिसे कहते हैं मोहब्बत।

0: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: आर्टिस्ट ऑफ द वीक लता मंगेशकर. और बहनों भाइयों, इस पूरे सप्ताह में आप उनके गीत सुनते रहे और अभी तो सुनेंगे. अभी इस वीक के वीकेंड वाले दिन भी बाकी हैं. लता जी हैं आर्टिस्ट ऑफ द वीक और उनकी आवाज़, उनका अंदाज, भाई उनका व्यक्तित्व अंकित है मेरे हृदय पर. हालांकि थोड़ी देर की मुलाकात थी, करीब घंटे भर से ज़्यादा की जो इंटरव्यू मैंने उन्हें उनका किया था भारतीय हाई कमीशन में. और अब आगे बढ़ते हुए भाई बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं और सब चिंतन की प्रशंसा में लिखे गए हैं. तरला मौर्जारिया जी, सुनीति जी और भाई जैस जी हिना, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. आपने तो गुड मॉर्निंग लिखा क्योंकि सुबह का आपका ये संदेश आया, ठंडा हो रहा था यहाँ पे. हिमांशु पटेल, हंसा वोरा, जैस्मीन, किशोर पांड्या, किशोर पान वाले, आनंद पान वाले कहते रवि जी थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल प्रेजेंटेशन ऑफ बंटवारा. भाई इस टाइटल से अब तो फिल्म भी आ रही है और बहुत सारी जानकारी इतिहास में दर्ज है, लेकिन है दुखद, ट्रेजिडी है. विजय घनोवा मॉरिशस से, वो कहती हैं भारत माता के इतिहास में सबसे बड़ा मनहूस दिन है पंडित जी, जिसे आप सेलिब्रेट करने की बात करें. भाई कुछ लोग कर रहे हैं सेलिब्रेट नेचुरली, स्वतंत्रता दिवस, योम आज़ादी तो है, लेकिन उनकी भी यादों में वो दुखद घड़ियां अभी मिटी नहीं होंगी, लिखी गई होंगी. और आज का चिंतन बहुत पसंद किया. किरण, आपको पसंद आया, थैंक यू वेरी मच. जगदीश बुशी से थैंक यू वेरी मच, आपको भी चिंतन अच्छा लगा. रंजन न्यू, नाइस चिंतन. रवि जी, अनिल सोनी वियाना में, आपको भी पसंद आया. भाई आज तो चिंतन के बारे में ही ज़्यादा संदेश हैं. राम राम रवि भाई, वेरी नाइस, यू मेड मी क्राई, गॉड ब्लेस यू. बताओ, रोकर भी दुआ देते हैं अशोक भसीन, क्या करें, वो घटना ही ऐसी घटी भाई, वो दौर ही ऐसा था. सुनीता शर्मा, थैंक यू, आपका मैसेज मिला. विमल रायन जी, सो नाइस ऑफ यू. भरत गंगाराम, जहीर खान कराची से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, वरहमतुल्ला, वालेकुम सलाम कहते हैं. सुपर्ब डे गुरु रवि शर्मा जी, क्योंकि हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आपका चिंतन भी बहुत अच्छा लगा. आज़ादी की उस मुबारकबाद के लिए आपका शुक्रिया, और वो जानकारी जो आपने दी है चिंतन में, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू जहीर भाई, उल्लास टोरंटो में सुन रहे हैं. शेखर भाई कहते हैं, क्या बात है, आज का चिंतन सुना, दिल दहल गया. हाँ भाई, हिला देता है वो घटनाएं, भले ही हमने देखी नहीं है, लेकिन सुनते हैं तो आंखों के सामने वो तस्वीर उभरने लगती है. थैंक यू शेखर जी. रानी स्लो वाली, अर्जुन जी, वजीर, सलाम रवि भाई, विशिंग ऑल पाकिस्तानी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. थैंक यू भाई, वजीर भाई आप सबकी ओर से मुबारकबाद पहुंच गई. प्रदीप सोलंकी, प्रकाश असूतर, निर्मला भारती, महेंद्र बरचारिया हैरो में, पम्मी सिंह स्लाव में, और ये कौन है भाई, ये छोरा हरियाणा का लाग है, पवन गनोरी छोरे रहे, कहता शर्मा जी आज मेरी गाड़ी में फूल फूल भरे हैं, तो फिर देख के यह खागड़ प्रसादी. अच्छा अभी रख बचा के, प्रोग्राम खत्म होने लगा ना, फिर तेरे फूलों का जिक्र करेंगे. पर पवन जुड़े रहा करो भाई, आपका सफ़र आसान हो जाएगा. ये तो बड़ा ट्रक चलाते हैं भाई पवन, और चलाते हुए गाना सुनते रहते हैं, प्रोग्राम सुनते रहते हैं. और ये याद दिला रहे, कहते हैं कल भारत की स्वतंत्रता का दिवस है, याद करो ना शहीदों को. देखिए वो अपने भगत सिंह जी, आपको पता वो एक राइटर भी थे, उन्होंने एक शेर लिखा और शेर में लिखते हैं, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इश्क भी लिखता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है.
3: ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती.
2: इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इश्क भी लिखता हूँ तो इनकलाब लिखा जाता है.

0: मुकेश महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में सुना आपने ये गीत।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: भाई अगले दिनों में हमारे कुछ कार्यक्रम, मतलब हम जिनके साथ सहयोग कर रहे हैं, तो भाई हमारे प्रोग्राम हुए जी जान लड़ा देते हैं हम किसी भी प्रोग्राम को कामयाब बनवाने में। तो एक तो कविता कृष्णमूर्ति जी का लाइव परफॉर्मेंस जो है उनकी हो रही है, शो आ रहा है उनका, लेजेंड कविता कृष्णमूर्ति परफॉर्म्स लाइव एट द रॉयल एल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1st November, ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एज ए दिवाली स्पेशल। टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू बॉक्स ऑफिस, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ कोर्स लाइका रेडियो नेटवर्क। इसके अलावा भाई अपने वो सुनील ग्रोवर, क्या बात है भाई इस नौजवान की, क्या प्रेजेंटेशन है, क्या अदाएं हैं। एक तो भाई परफेक्ट मेकअप, परफेक्ट संवाद, आवाज, डिलीवरी, कैच द कॉमेडी जीनियस सुनील ग्रोवर लाइव इन लंदन एट ओवो अरीना वेम्बली ऑन थर्सडे 29th October एंड लेस्टर एट मेटोली अरीना ऑन सैटरडे 31st October। टिकट्स एट AXS, इवेंट ब्राइट एंड टिकट मास्टर, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ कोर्स, वी आर द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर रायका रेडियो नेटवर्क। और भाई सुनील ग्रोवर के बारे में याद दिला दूं, कहीं बाद में कोई और क्लेम ना कर ले, ही इज हरियाणवी, सिरसा से है भाई। सुनील ग्रोवर जो है कितने रूप, कितनी अंदाज, कितनी तरह की आवाजें निकालते हैं, तो डॉक्टर मशहूर गुलाटी जरूर मिलिएगा उनसे।
1: ये है लाइका गोल्ड।
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: भाई मेरा रंग दे बसंती चोला गीत सुनवाकर हमने एडवांस में बधाई दे दिया भारतवंशियों को भी। ठीक सा भाई पवन इसने काम चला ले, और पवन शर्मा भी सबको भारतीय स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे रहे हैं एडवांस में। और ये गीत होगी तो होगी, अच्छे निभाले। मेरी माँ इस गीत को सुनती है और फिर मुझे पूछती है ये क्या कह रही है, मैंने कहा माँ कह रही है, कहती क्यों ये घर में मिलके नहीं रह सकती, कहती है न्यारी होंगी न्यारी होंगी न्यारी होंगी

0: holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: और साउथ और ट्रेवल का पैगाम आपके नाम भाई, दिस इज दैट एफसीडीओ हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई। कॉल साउथ और ट्रेवल फॉर द मोस्ट कंपेटिटिव दुबई डील्स ऑन 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: ये है लाइका गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 02087828833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Visit travelhubworld.com।
4: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके। जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट। एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम। टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: कमल रहा तो मैं हूँ भाई। मैंने आज जॉनी लीवर को याद नहीं किया, अपने दोस्त, अपने प्यारे मित्र, अपने न्यारे कॉमेडियन भाई जॉनी लीवर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू हिम। लीना वाडिया ब्रिटिश एक्ट्रेस भाई, उनका भी जन्मदिन है आज।
1: हीरे आँख दी जोगिया झूठ बोले,
0: ये दूसरी दीना वाडिया भाई, ये तो वो लगता है कि डॉटर ऑफ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। हाँ, दो हैं दीना वाडिया, ये वो एक्ट्रेस नहीं है भाई। लंदन में पैदा हुई थी, डॉटर ऑफ बाबा कौम पाकिस्तान के, मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी दीना वाडिया। बड़ी विद्रोही किस्म की उसकी हैबिट्स थी भाई।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Deirdre, look, it's the Bottomleys this time, sliding across their car bonnet.
2: Leave them be, Philip. They just claim confident.
1: Claim confident?
2: Yes, by doing their own car finance compensation claim, using the FCA's free tools to help, they'll keep 100% of what they're owed. I've just done ours too. Come on!
1: Deirdre, come back here.
3: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.
4: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापूजी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934
5: 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
7: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
8: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
7: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
9: और लीजिए साहब, अब इजाजत लेने का समय हो गया है आपसे। कब तक हौसला करे कोई, आज वो फैसला करे कोई। ऐसे मिलने से तो ये बेहतर है कि शौक से ना मिला करे कोई। अब बाली भाई को जगह देने के लिए स्टूडियो से अब चला करे कोई। इजाजत दीजिए, बाय बाय।

What a song, what a song. And I am actually so excited today because doing a tribute of one of the greatest names of Bollywood, especially after having met him, not once, not twice, but a few times, and sitting in front of him and doing a Ghoda Gaadi medley on a table. It was just, we had no musicians or no instruments with us, and he was a chief guest. Inki ek zameen thi Pune mein, inhone bechi ye zameen, aur jinko bechi thi wo mera dost tha. To he built a hotel us zameen pe, to uski opening pe mujhe bulaya, lekin usne kaha nahi ke Shammi ji will be the chief guest there. He said, Bali, mera opening hai hotel ka. Bollywood ya aisa kuch, Boulevard aisa kuch naam rakha tha. So he did the opening. Aur hum jab pahunche wahan pe, to maine dekha Shammi ji aur Randhir Kapoor ji dono the wahan pe. He was in a wheelchair. And they said, Bali is... a singer, he says, हाँ हाँ मिला हूँ इसको मैं बाला साहब ठाकरे के साथ वो स्टेज पे जब गा रहा था तो मैं ऑडियंस में था और फिर दूसरी बार इन्होंने एक और बार भी मुझे मिले थे लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि बाली कुछ सुना वो जो होस्ट थे उन्होंने कहा मैंने कहा यार ना तैयारी ना कुछ भी ऐसे ही आपने बोल दिया तो मैंने कहा कि ओके मुझे 20 मिनट दे दो फिर मैं चला गया वहाँ से और 20 मिनट के बाद मैं वापस आया और मैंने कहा कि इंस्ट्रूमेंट्स कोई नहीं है तो हम ऐसे टेबल पे बजाएंगे लेकिन हमने पूरी शम्मी कपूर की घोड़ा गाड़ी मेडली हमने शुरू कर दी जैसे कि तुमसा नहीं देखा फिर सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे उसमें दूसरे घोड़ा वाले जितने गाने थे घोड़ा गाड़ी वाले सो वो सब इकट्ठा करके हमने एक मेडली बनाई एंड देन आई सैंग दैट एंड ही वाज सो सो हैप्पी बिलीव यू मी बिकॉज ही सेड के जिसने कोई तैयारी ना की हो ना कोई म्यूजिशियंस है और इसने वैसे ही एक्सटेम्पो कर दिया तो तब से बड़ी अच्छी दोस्ती रही एंड शशि कपूर जी के साथ भी ऐसी दोस्ती थी जब मैं इनके फ्यूनरल पे गया उनके घर पे आई सॉ द बॉडी लाइंग देयर आई कुडंट बिलीव दैट्स द सेम मैन हु हैज एंटरटेन मिलियंस विद हिज एल्विस प्रेस्ली स्टाइल डांसिंग एंड हिज एक्टिंग एंड हिट फिल्म्स चलो इनको याद करते हैं आज इट्स अ प्लेजर It's his 15th death anniversary. Born on 21st October.

0: 1931 in Bombay. Born in Bombay and died in Mumbai, 14th August 2011, also known as Elvis Presley of India. जी हाँ, चलो हम ये सब बातें नहीं करेंगे, इनके पिताजी कौन है, इनके भाई कौन है, आप सब कुछ जानते हो. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द डेब्यू, कहाँ से शुरुआत की इन्होंने. 1953 में फिल्म जीवन ज्योति, हीरोइन थी चांद उस्मानी. लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पीपल थिंक ही हैड सच अ स्मूद सेलिंग बिकॉज ही वॉज फ्रॉम द कपूर फैमिली, लेकिन इट वॉजन सो. इन्होंने चाइल्डहुड तो पेशावर में कपूर हवेली में बिताया था, एंड इन कैलकाता विच इज़ नाउ कोलकाता. हिज फादर वॉज इन टू न्यू थिएटर स्टूडियोज एक्टिंग इन फिल्म, बट ही लेफ्ट कॉलेज एंड ही ज्वाइंड हिज फादर्स थिएट्रिकल कंपनी विच वॉज पृथ्वी थिएटर्स. फिर 1948 में जब 17 साल की उम्र थी, ही एंटर द सिनेमा वर्ल्ड एज अ जूनियर आर्टिस्ट. सैलरी कितनी थी? 50 रुपया एक महीने के, जूनियर आर्टिस्ट, क्योंकि इनके पिताजी कहते थे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, अदरवाइज यू विल नेवर लर्न, अ जूनियर आर्टिस्ट. फिर 1952 में ही कलेक्टेड हिज लास्ट पे चेक ऑफ 300 रुपीज जस्ट बिफोर हिज फर्स्ट फिल्म इन 1953 विच वॉज जीवन ज्योति. लेकिन ही मेड अ मिस्टेक, यू नो, 1953 टू 1957 he started doing serious roles, and he also started accepting roles as second fiddle in women oriented movies. Us zamane mein the women were very powerful. Madhubala was very powerful, Nutan was very powerful, Shyama, Nalini Jayavant, then Suraiya, Meena Kumari, ye sab badi powerful actresses thi. तो इनके साथ एक्टिंग करके एज अ सेकेंड फिडल ही मेड अ मिस्टेक. जैसे कि रेल का डिब्बा और नकाब फिल्म में मधुबाला के साथ, लैला मजनू विद नूतन, देन हम सब चोर हैं विद नलिनी जयवंत, ठोकर विद श्यामा, एंड देन शम्मा परवाना विद सुरैया, चोर बाजार, मिर्जा साहिबान विद श्यामा, एंड देन दूसरी थी मेम साहिब. इट वॉज अ कॉमेडी फ्लिक विद मीना कुमारी. सो 1957 तक ही वॉज ऑन हैविंग एनी लक बिकॉज ही वॉज टेकिंग सीरियस रोल्स. मूछ मुछे रखी थी, ये सब. जब इनकी शादी हुई गीता बाली से, गीता बाली से जब शादी हुई 1955 में, उसके बाद गीता बाली ने उनको कहा कि ये मूछे मुछे सब निकाल दो, कुछ नया रंग लाओ, एंड स्टार्ट डांसिंग एंड एवरीथिंग. ही लिसन टू हर, and when he did that he got the first role of Nasir Hussain's Tumsa Nahi Dekha 1957 mein, and then Dil Deke Dekho. Ab dekha jaye to 1957 ke baad inki heroines ke agar main naam lun to aap taaliyan marenge. Ji ha, ye dekho, Asha Parekh, Saira Banu, then Sharmila Tagore, राजश्री. आई मीन आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट देर यू आर, दैट इज शमी कपूर. एंड शमी कपूर की 6 फिल्में जो शक्ति सामंत ने डायरेक्ट की थी. शक्ति सामंत वॉज द म्यूजिक दी व्हाट यू कॉल डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर. इनकी दूसरी फिल्में तो ऑफकोर्स एवरीबडी नोज, हावड़ा ब्रिज, जाली नोट, आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम, अनुराग, अनुरोध, द ग्रेट गैम्बलर, अलग अलग, दुश्मन, देवदास ऑफ 2002. तो ये सब फिल्में जो जिन्होंने डायरेक्ट की थी, उन्होंने शम्मी कपूर को 6 फिल्मों में डायरेक्ट किया था. सिंगापुर, जिसका गाना आपने सुना, रत्ता सायांगरे, and that was 1960. Chinatown 1962, Kashmir Ki Kali 64, An Evening in Paris 67, Pagla Kahin Ka 1970, and Jaane Anjaane 1971. वो 6 फिल्मों के गाने मैं आपको सुनाता हूँ, फिर उसके बाद we will see के besides रफ़ी साहब, रफ़ी साहब was his favorite singer, शमी कपूर जी के, तो बिसाइज रफ़ी साहब और सिंगर्स जो थे जिन्होंने उनके लिए गाया था, उनके गाने सेकेंड आवर में। थर्ड आवर में वी शैल सेलिब्रेट बर्थडेज ऑफ जॉनी लीवर। जॉनी लीवर भाई कल मैसेज भेजा, 69 ईयर्स यंग। इतने सारे मैसेजेस आए मेरे पास और मैंने रिले कर दिए। सो आई थैंक डॉक्टर हरीश परमार, सुनील जादव, इन सब ने वॉइस मैसेजेस भेजे जो मैंने उनको फॉरवर्ड किए। मेरी फैमिली ने भी किए, माय वाइफ ऑल्सो सेंट हिम अ मैसेज बिकॉज हम लोग एक शिप में साथ में थे, एक क्रूज में, दैट वाज फ्रॉम लॉस एंजलिस टू बाहा मैक्सिको, एंड जॉनी भाई साथ में थे। फिर उसके बाद सुनिधि चौहान इज 43 ईयर्स यंग टुडे, एंड वी हैव 64 ईयर ओल्ड मोइनिश बहल, नूतन जी के बेटे। ये सब ट्रिब्यूट्स होने वाली है, सो जुड़े रहिएगा फॉर ऑल द थ्री आवर्स। मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling will fetch you, let me see the latest rates now, because the rates do keep on fluctuating, so I have to check before I give you the rate. 128.65 Indian rupees for one sterling pound. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: You're listening to Bali Brahmbhatt in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Star Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
5: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
6: No more worries for me.
7: Southall Travel, at all protect

0: मास्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
3: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
4: Stardom Media proudly presents Janmashtami Bhajan Jamming with the soulful Nandlal Changa.
5: कृष्णन जन्म नो आनंद उत्सव एक रात एक अनुभव
4: 5th September at Wembley, 6th September at Crawley. Tickets only £25. For tickets booking, visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or StardomMediaLTD.com.
5: Stall and sponsorship mate call 07940924667. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
6: Mukesh aur Lata Mangeshkar ke evergreen gaano ki yaadon mein ek khoobsurat musical sham. Pankaj Sodha presents Hum to Tere Aashiq.
7: Hum to Tere Aashiq hai sadiyon pura.
6: Sweet memories of Mukesh and Lata with Sangeeta Melekar और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th अगस्त हेच एंड हाई स्कूल हैरो 30th अगस्त वुडमैनस्टर्न स्कूल साउथ लंदन डिनर फ्रॉम 5 PM शो स्टार्ट्स एट 7 PM फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर
11: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 02084260678
12: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा
13: The wait is over Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic Avarapan 2
12: उसने मुझे छुआ पर अपना आया नहीं
14: तो फिर
13: Now in cinemas for your nearest cinema listings visit Bacronia Media on Instagram
15: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham. This October, for sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
16: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free, butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
17: मरीज इश्क का क्या है जिया जिया
18: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है
19: Feel good track Brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
2: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
3: Dad!
4: What's wrong, beta?
3: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
4: I will run down to the money exchange now.
3: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
4: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
5: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
6: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
7: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10kg is only £7.99. Exclusively at quality food stores.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
9: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
10: परंपरा भी
11: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 07795181001।
12: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 0208767627।
13: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. It's summer on the Like a Radio Network.

0: Hold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £103.98 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर
3: गोल्ड आफ्टरनून प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय जेमिन फूड्स द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ इंडिया दाल भात पाव भाजी बिरयानी बस पेट संभाल जो क्योंकि क्रेविंग्स बढ़ने वाली है.
4: This part of the show is brought to you by Star Plus.
5: Previously known as Utsav Plus.
4: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
6: वॉटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
7: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
6: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
7: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे.
8: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
9: Leicester Miller is back.
10: Get ready for a weekend full of colour, culture, music, food, family fun and live performances.
9: Confirmed artists include Lember Hussein Puri, H Thami, Roach Killer, Chirag Rao and Shin DCS.
10: Hosted by the team of Laika Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester. An event by 101 Circle in association with Leicester City Council and Arts Council England.
11: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208922334 Our line.
12: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं. फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
13: यू नो हाउ यूके वेदर कैन do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
2: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
1: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
2: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
1: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
2: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई.
3: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
4: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
3: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
5: sonatours.co.uk special offer Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of August and get up to 400 off. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
6: Hello, hello, hello. I'm Kajal.
7: Main hoon Sarita Sabharwal.
8: Hi, Vishpit Naga here.
9: Hello, this is Annika from Weekend Drive.
10: Hello, it's me, Raj Barin. Don't forget to check us out
6: at Leicester Mela this weekend, 15th and 16th August. Two incredible days filled with live entertainment, music, dancing, delicious food, family fun and that unbeatable Mela atmosphere.
10: At Abbey Park. See you there.
11: Across London, this is Bally Brambat on Like a Gold.

0: This is Leica Gold. Reminisce those classics.
1: और ये है जाने अनजाने

0: मेटालिक पेटी लेकर वो रस्ते से जा रहे हैं. ही इज जस्ट वॉकिंग थ्रू द क्राउड्स एंड ही इज लीविंग टाउन और समथिंग लाइक दैट. एंड इट शोज इट्स अ सैड सॉन्ग. बट देन देयर यू गो, हेमंत कुमार साहब ने गाया शमी कपूर जी के लिए. दूसरे सिंगर्स, किशोरदा वॉज सो क्लोज टू शमी कपूर जी, लेकिन किशोरदा वॉज वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट रफ़ी साहब और वो काफ़ी जुड़े हुए थे सारी सब फिल्मों में. बट दे मेंटेन देयर फ्रेंडशिप. एक फिल्म थी जाने अनजाने, उसमें किशोरदा ने गाया लेकिन इट वॉज अ बैकग्राउंड सॉन्ग. जब पुलिस कोर्ट में से पुलिस वैन में शमी कपूर को ले जाते हैं एंड देन दी एंड नज़र आता है एंड दे टेक हिम अवे, वो बैकग्राउंड में जाने अनजाने लोग मिले, वो गाना मैं आपको सुनाऊंगा किशोरदा का. फिर मुकेश जी ने गाया था फिल्म सिंगापुर में एंड उजाला फिल्म में मन्ना डे उन्होंने गाया था. सुबीर सैन, यू नो हु साउंडेड लाइक हेमंता, उन्होंने भी गाया था एक फिल्म में उनके लिए. दूसरे गाने ऑफ कोर्स बिसाइड्स रफ़ी साहब, देयर वाज अ फिल्म दैट वाज मेड बाय शमी कपूर जी एंड डायरेक्टेड बाय हिम एज वेल, उसका गाना बड़ा खूबसूरत है, लता मंगेशकर जी ने जो गाया हुआ है किशोरदा के साथ. एंड आई थिंक देयर इज अनदर सिंगर देयर एज वेल, इट्स मन्ना डे. इन तीनों ने मिलकर गाया है. अगर फिट नहीं हुआ तो फिर मैं वो गाना आपको सुनाऊंगा इन द आर्टिस्ट ऑफ द वीक, लाइक यू नो. सो सुनते रहिएगा. एंड शमी कपूर जी की बात अगर मैं करूं तो ही वाज द ओनली डांसिंग स्टार इन फिल्म्स एंड कोरियोग्राफ्ड हिमसेल्फ इन दोज डेज, बट देन ही बिकेम ओवरवेट एंड एक्टेड दैट प्रूव्ड दैट ऑब्स्टिकल प्लेइंग द रोमांटिक हीरो, यू नो. सो when he got overweight it was an obstacle playing the romantic hero, so he started playing character roles. Thank god he started doing that because he did not stop acting. Ye badi achhi baat thi because he gave some character roles, Amitabh Bachchan ke foster father in Parvarish, then character roles in Batwara, not the latest Sunny Deol film but Batwara un dino ki, and then Tehelka. एंड देन ज़मीर फिल्म जिसमें सायरा बानू उनकी हीरोइन थी, फिल्म जंगली में, यहाँ पे वो सायरा बानू के फादर का कैरेक्टर निभाते हैं. एंड देन देर इज चमत्कार फिल्म, नमक एंड प्रेम ग्रंथ, विधाता फिल्म, उसके अंदर हाथों की चंद लकीरों, क्या बात है, हुकूमत फिल्म. एंड देन ही डायरेक्टेड मनोरंजन एंड बंडलबाज. So, we are talking about none other than Shammi Kapoor on Laika Radio with Gold Afternoons. Main hoon Bali Brambat. Show is sponsored by Jaymin.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Okay, £1 in British sterling can fetch you 128.65. 128.65 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brambat. Bali Brambat is sponsored by Jaymin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pulp, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe Tamara Najikna Asian Shops ma.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Star Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
5: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye, jahan ghazals milti hai Bollywood se.
6: Shaam chalne lage.
5: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड।
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com। T&Cs अप्लाई।

0: फिल्म बॉयफ्रेंड 1961.
1: देखो ना जाओ है जाने मन.
0: A song with an attitude, because Subir Sen knew he was singing for Shammi Kapoor. इसलिए attitude वाला गाना बड़ा मजेदार गाना.
2: Like a Goon, London का number one Asian retro music station.
0: Back to Rafi Sahab, film Jungli.

रफी साहब को सुनकर फॉर शम्मी कपूर ऐसे लगता है कि जान में जान आई. फील सो गुड डोंट वी. एंड दूसरी फिल्म है दिल दे के देखो, नासिर हुसैन की, आफ्टर तुम से अच्छा कौन है, द सेकेंड हिट ऑफ शम्मी कपूर. एंड ये गाना बड़ा पॉपुलर हुआ आशा भोसले एंड मोहम्मद रफी साहब का. दिल देके देखो, द सेकेंड हिट ऑफ शम्मी कपूर 1959, द न्यू डांसिंग हीरो दैट इमर्ज्ड ऑन टू द बिग स्क्रीन्स. Laika Gold doing a tribute on the 15th death anniversary of Shammi Kapoor.

0: करके शादी करके फंस गया यार।
1: इसमें मेरी आवाज है, शंकर महादेवन जी की आवाज है, और तीसरे सिंगर जिनका नाम मैंने बताया नहीं था, एंड दैट वाज, डू यू नो हु? I'll keep you in suspense. We're wishing Johnny Lever Sahab happy birthday today from Like a Gold.

0: जो था वो स्टेज पे गई, 6 साल की, इतना ब्यूटीफुल फ्रॉक पहना था उसने, फ्रिली फ्रॉक, एंड डैडी ने कहा जा बेटे गा, एंड वो ऊपर गई एंड वहाँ पे इन लोगों ने स्मोक मशीन शुरू कर दिया, तो स्मोक मशीन में वो स्मोक थोड़ी सी गले में फंस गई एंड शी चोक्ड अ लिटिल बिट, तो एक सुर हिल गया गाते गाते, शी डिड दैट एंड शी स्टार्टेड सिंगिंग अगेन, बट शी केम बैक स्टेज आफ्टर द सॉन्ग एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, इतनी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी पापा आई कुडंट सिंग प्रॉपरली, मैंने अच्छा नहीं गाया। आई सेड इसलिए क्योंकि इन लोगों ने वो स्मोक इफेक्ट दिया, तो ऐसा होता है, डजंट मैटर, पीपल डिडंट रियलाइज इट एनीवे। तो बोलते नहीं मैंने अच्छा नहीं गाया, वो रोने लगी। मैंने कहा इनके डैडी को, मैंने कहा साहेब जी ये बड़ा नाम कमाएगी और बहुत बड़ी बनेगी, क्योंकि इसको एक सुर से इतना फ़र्क पड़ जाता है, इतनी कंसर्न्ड है एट दिस यंग एज। सो सुनिधि चौहान, आई स्टिल रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर शो इन हांगकॉन्ग, एंड आज की तारीख में जैसी बुलंदी पे वो है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोच कर कि आई वॉज राइट when I said she's gonna be a big name, not because I said it, but iski takdeer aisi, lekin I sussed it out right. Next birthday we're gonna remember is none other than quite a good name, Moinish Bahel. Moinish Bahel is the son of Nutanji, and he's 64 years old, that's right, 14th of August 1961, Moinish Bahel. And uska ek gana maine chuna hai, bada pyara gana hai. He did his debut in the film Bekarar, I think, yes, 1983 ki film thi, support role opposite Padmini Kolhapuri, she did. And not only that, he did some negative roles. Kya kya negative roles inhunne nibhaye? Ooh la la! He was Maine Pyar Kiya Mein. He was by the name of Jeevan. Haan, I distinctly remember. Ek dialogue tha. Ek ladka aur ek ladki kabhi dost nahi hote. Wo dialogue bada popular raha. And then he got the breakthrough, of course, in Maine Pyar Kiya. Hum saath saath hain. हम आपके हैं कौन, एंड देन दूसरी फिल्म में जैसा डहान नेगेटिव किया था, एक रिश्ता 2001 की, जिसमें नरेंद्रा बने थे, एक फिल्म में उसका नाम बाली था शोला और शबनम, जिसमें नेगेटिव रोल किया था, अमित वाज अ नेम दैट ही यूज्ड इन सबसे बड़ा खिलाड़ी, एंड देन एक इंस्पेक्टर बने हुए थे कहो ना प्यार है मैं, वो भी नेगेटिव रोल था, एंड देन मेजर प्रताप सिंह, प्यार जिंदगी है एक फिल्म थी जिसमें ही बिकम्स अ मेजर प्रताप सिंह फ्रॉम द आर्मी, एंड राजेश खन्ना वाज हिज फादर इन लॉ, एंड ही गेट्स मैरिड टू राजेश खन्नाज डॉटर एंड ही मर्डर्स हर बिकॉज ही वाज क्रेजी अबाउट द यंगर डॉटर, आशिमा भल्ला वॉज द हीरोइन. Why I know so much? Because I gave the music of that film, Pyar Zindagi Hai. Wahan pe Moinish aur Rajesh Khanna, hum sab milte the, bada maza aata tha. I got some very good response from them when I did the music of Pyar Zindagi Hai. Kesi Bokaria ji ki film thi wo. Suniyega kabhi, agar chance mila to aapko, wo film Pyar Zindagi Hai. मैं हूं बाली ब्रह्मभट विद गोल्ड आफ्टरनून्स विद द शो स्पॉन्सर्ड बाय जयमिन.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you up to 128.65 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
3: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
4: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: Mega blockbuster Dhurandhar on Star Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.

0: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। That's 8574-8410.
1: Safo Travel. Auto protected.
2: 0730-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730-99-8823।
3: स्टारडम मीडिया प्राउडली प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद द सोलफुल नंदलाल छांगा।
4: गोविंद बोलो हरि गोपाल।
5: कृष्णना जन्मनो आनंद उत्सव, एकज रात एकज अनुभव।
4: नंद घर आनंद भयो जय करे।
3: 5th September at Wembley, 6th September at Crawley. Tickets only £25. For tickets booking, visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or stardomedialtd.com.
5: Stall and sponsorship mate call 07940924667. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं। और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट Sunday, the 6th of September at the Mesha Lohana Center, London. Apni seats abhi book kijiye. For more information, call Ashwin on 07956-278-228. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
9: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में। इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर। आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए। 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर।
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208-426-0678.
11: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.

0: Mamster Golgappe ate Golgappiyan da paani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 02087677627।
3: हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी अपील ही है।
4: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
5: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: To book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा.
2: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Awarapan 2.
1: उसने मुझे छुआ, पर अपनाया नहीं.
3: तो फिर
2: Now in cinemas. For your nearest cinema listings, visit Bacronia Media on Instagram.
4: Search is changing.
5: Customers aren't just using Google anymore.
4: They're asking AI.
5: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
4: One business, one recommendation.
5: So when someone asks AI, who's the best company for this?
4: Will your business be the answer?
5: Or the one that got left behind?
4: The future of search has already started.
5: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
4: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
6: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
7: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
6: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
9: Cutthroat Kekilari, Saturday and Sunday at 8 PM on Colours TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Linecroft.
10: Cutthroat Kekilari.
11: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
12: Gold Drive with Sandy Shah.
13: Oh, yeah.
14: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
15: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 PM on Laika Gold. Make it a date.

0: visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour लाइन.
2: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम. पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक.
3: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा.
2: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ. 29th अगस्त हेच एंड हाई स्कूल हैरो. 30th अगस्त वुडमैनस्टर्न स्कूल साउथ लंदन. डिनर फ्रॉम 5 PM. शो स्टार्ट्स एट 7 PM. फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 0794756194 7.
1: 0730-00-998-23. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 0730-00-998-23.
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन.
4: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
2: high appreciation.
4: In Dubai.
5: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10 kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10 kg, only £7.99, exclusively at quality food stores.
6: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
7: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स. क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
6: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
8: डेड्रे, लुक, इट्स द बॉटम लिड दिस टाइम स्लाइडिंग अक्रॉस देयर कार बोनेट.
9: Leave them be, Philip. They just claim confident.
8: Claim confident?
9: Yes, by doing their own car finance compensation claim, using the FCA's free tools to help, they'll keep 100% of what they're owed. I've just done ours too. Come on!
8: Deirdre? Deirdre? Come back here.
10: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.
11: Like a Gold. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे.
12: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: सुन रहे हैं गोल्ड ड्राइव विद सैंडी शाह।
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
3: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
4: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
5: Stardom Media proudly presents Janmashtami Bhajan Jamming with the soulful Nandlal Changa.
6: कृष्णना जन्मनो आनंदोत्सव एक रात एक अनुभव।
5: 5th September at Wembley, 6th September at Crawley. Tickets only £25. For tickets booking, visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or StardomMediaLTD.com.
6: Stall and sponsorship mate call 07940924667. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
7: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए जहां गजल्स मिलती है बॉलीवुड से।
8: शाम चलने लगे दिल मच।
7: With the legendary Anup Chalota on Sunday 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: September महीना में हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे।
2: तमे बता पुरुष हो तो लगने कुवारा हो छो।
3: ए तमे स्त्री अमने छे ने पुरुष हो ने खोटा ओगवानु बंद करो।
1: कॉमेडी किंग निमेशा अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे। सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान मा। हवे राइसली पॉटर्स बार ईफर्ड साउथ लंडन अने ल्यूटन मा। टिकट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931534270। नाटक नु नाम याद राखजो।
4: हेलो पटेल भाई जान मा।

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
4: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
5: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
6: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.

0: शादी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
1: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स। परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर। आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए। 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208-426-0678।
3: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
4: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
5: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
4: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
2: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मां भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मां दर्शन नो लाभ. आ पवित्र यात्रा मां जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मड़शे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो. डिपार्चर 5 सितंबर ना. मंत्रा हॉलीडेज, कॉल करो 02037736333. मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
3: कैरेटिनो बेटर घी, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Carotino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Carotino Better Ghee.
4: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: ਗੱਪੇ ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Mamster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
3: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
4: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics.
5: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com
6: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious, delicious possibilities with Tilda.

0: Like a Gold, Traffic and Travel.
1: I'm Brooke Laurie. The A3 East Hill between Melody Road and St Anne's Hill Road is closed both ways following an incident. There's queues as a result in the area. The A2 westbound at the M25 Darrenth Interchange, there's congestion to Pepper Hill at Gravesend. Delays via Greenhithe as well, Green Street Green and South Darrenth following an earlier incident, so expect the long queues. The A406 North Circular westbound from the A112 Walthamstow to Hall Lane, there's an incident, so the road is partially blocked with queues. Churchfields Road between Sultan Street and Kimberley Road has reopened following an earlier incident. And the A40 Western Avenue, with the usual queues there heading westbound before Gypsy Corner. And that's your latest traffic and travel.
2: When it comes to shutters, you need to call in the experts. That's why thousands of happy customers choose Hillary's every year. Every one of our shutters comes with a 10-year guarantee as standard, and our UK-made shutters can be fitted in as little as 3 weeks. And if you find a cheaper quote, we'll match it, because we know you want the wow factor for your windows at the right price. And until the 24th of August, you can save up to 50% off selected shutters in our summer sale. So get window wise and book your free in-home appointment today at hillarys.co.uk. Conditions apply.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: This part of the show is brought to you by Star Plus,
4: previously known as Utsav Plus.
3: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392. Gajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Gajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Gajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Gajal's Couture.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
6: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
7: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
8: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for 4 people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. TNCs apply.
9: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208922334 24
10: पावर लाइन।
11: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
7: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
11: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
7: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: हॉन्स्लो, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
13: परंपरा भी
14: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो, TW3 1QT। कॉल करें 07487-687-885।
12: sonatours.co.uk स्पेशल ऑफर 14 डेज टू जापान एंड साउथ कोरिया फॉर चेरी ब्लॉसम्स इन मार्च एंड अप्रैल 2027। बुक बिफोर द एंड ऑफ ऑगस्ट एंड गेट अप टू 400 ऑफ और लूज द डिस्काउंट आफ्टर। कॉल सोनाटूर्स नाउ ऑन 02089510111।
0: The Evening Show with Ashwini.
15: Hi, मैं हूँ अश्विनी। हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी। फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए।

भाई जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। फैंटास्टिक फ्राइडे आ चुका है और आप और हम सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे फैंटास्टिक फ्राइडे। और उसके पहले हमारे सारे पाकिस्तानी भाई बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे के बहुत सारी शुभकामनाएं, आपकी दोस्त अश्विनी की तरफ से, लाइका गोल्ड रेडियो की तरफ से भी। हाँ जी, तो आज पूरी दुनिया में जहाँ पे इतना जश्न मनाया जाता है व्हेन इट कम्स टू इंडिपेंडेंस डे ऑफ एनी कंट्री, तो सभी लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं। आई एम श्योर आप सबने भी काफ़ी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। एंड हमारी तरफ से जब हम कहते हैं कि हम आपके साथ खुशियों में, दुख में, सब चीज़ों में हैं, तो आपके लिए कुछ तो सुनाना ज़रूर बनता है। एंड क्या सुनाने वाली हूँ मैं, तो दिस स्पेशल सॉन्ग फ्रॉम मी टू ऑल माई लवली लवली लिसनर्स फ्रॉम पाकिस्तान। आप सबके लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिल सकते हैं 128 इंडियन रुपए एंड 65 पैसे. एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. टीस एंड सीस अप्लाई.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना है. तो 7:20, फैंटास्टिक फ्राइडे मनाते हैं आप और हम हर फ्राइडे. होता ये है जो हमारे नए लिसनर्स हैं जिन्होंने आज ट्यून इन किया है, तो जनरली फ्राइडेज़ को सारे हमारे लिसनर्स अराउंड द ग्लोब, अब उनके यहाँ कितने भी बजे हों, वो खा पी के ना तैयार होते हैं, क्योंकि इस शो में सारे ऐसे गाने बजते हैं फ्राइडे, क्योंकि आरजे अश्विनी उस दिन बन जाती है डीजे अश्विनी. तो आरजे का मतलब होता है रेडियो जॉकी, डीजे का मतलब होता है डीजे डिस्क जॉकी, जो ऐसे गाने प्ले करते हैं कि जहाँ पे आप मजबूर हो जाते हैं पैर थिरकाने के लिए एंड डांस मस्ती करने के लिए. सो अच्छा, आज मैं ना थोड़ा लेट पहुंची स्टूडियो, हुआ क्या बताती हूँ, और उसी से रिलेटेड मेरा सवाल भी है. तो क्या आपको लगता है कि आप जिंदगी में कुछ कुछ चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आपके साथ में होती ही है? विद द बॉइलिंग ट्रेन्स अराउंड द शहर, मेरे प्ले के रिहर्सल के बाद में मैंने सोचा कि यार मैं आज सीधे स्टूडियो नहीं पहुंचती हूँ, घर जाके गाड़ी लेके और फिर मैं पहुंचूंगी, ठीक है. सो आई जस्ट टुक द ट्रेन, फर्स्ट बॉइलिंग ट्रेन जिसमें मैं ऑलरेडी बेक हो चुकी थी. तो मेरे जो मूड की मतलब जो स्थिति होनी चाहिए आप लोग समझ गए, क्योंकि आप सबकी स्थिति भी वही हो रही है. दूसरी ट्रेन लेके भी पहुंची और स्टेशन से मुझे बस मिली नहीं मेरे घर तक की. एंड 15 मिनट्स इतने प्यारे वेदर में बहुत सारा विटामिन डी लेते हुए मैं घर पहुंची एंड फिर कोल्ड कॉफ़ी पी के अपना दिमाग कूल किया. क्या आपके साथ में भी ऐसा हुआ है कि कभी किसी चीज़ से बचने के लिए आपने पूरे जोर शोर से कोशिश कर ली लेकिन यू हैव टू फेस दैट? चलो आज यही सवाल है. जैसे मेरी हालत हुई कि मैं गर्मी से बचने के लिए ट्रेन भरी, ट्रेन में भी जो गर्माहट होती है उससे भी बचने के लिए इतना तामझाम किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा गर्मी मुझे मिली है.

0: किशोर कुमार की आवाज में आप सभी को सुनाया कर्ज फिल्म से ये गीत। 1980 में ये फिल्म रिलीज हुई थी एंड कर्ज के तो सारे ही गीत सुपर डुपर हिट थे ना, ये फिल्म ही सुपर डुपर हिट थी, तो क्या ही बात करें। अभी जब जितने भी गाने लाइंड अप हैं आई एम श्योर आप सभी इंजॉय करने वाले हैं। दिस इज फैंटास्टिक फ्राइडे ऑन द इवनिंग शो विद अश्विनी। यस, मैं आप लोगों को लाइव थियरी सुनाने वाली हूँ कुछ ही देर में, लेकिन मेरा जो सवाल है उसका जवाब कितने लोग दे रहे हैं, बहुत सारे लोग दे रहे हैं कि उन्होंने भी यही कहा कि भाई जब जब हमने भी सोचा कि आज देखो, मैंने कल बताया था ना लाइव थियरी में शॉर्टकट आज मैंने शॉर्टकट लिया, मैंने सोचा नहीं नहीं घर पे जाके गाड़ी लेके फिर पहुंचती हूँ, तो ना देखो मैं ही हूँ जीती जाती एग्जांपल, और क्या ही बताएं, लाइव थियरी लाइव। ओके, सो किसी ने मुझे लिख के भेजा है कि भाई मैंने सोचा था कि आज मतलब उनकी कभी तो ऑफिस में से छुट्टी थी वीक डेज में, एंड शी सेड कि मुझे कुकिंग नहीं करना था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई ऐसा है कि आज बाहर से खाना ले आते हैं, लेकिन बिकॉज उनकी ससुराल वाली मंडली भी यहीं रहती हैं तो के सारे आ गए, एंड दीदी का मूड नहीं था, फिर भी उनको पूरा का पूरा खाना बनाना पड़ा। तो यस, इट हैपेंस कि जब हम सोचते कि नहीं आज आराम से काम कर लेंगे, लेकिन होता है। किसी ने अपनी गाड़ी के बारे में किससे सुना है, किसी ने ट्रेन ट्रैवल के किससे, उन्होंने भी सुना है मेरी तरह कि कैसे क्या क्या हुआ, मज़ेदार से किससे आ रहे हैं। यू नो दैट्स द रीज़न आई कीप ऑन आस्किंग यू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि फ्राइडे आज तो टेंशन ना लो और टेंशन ना दो, प्यार लो प्यार दो, है ना, जो हमने आपको गीत सुनाया था शुरुआत में। तो बढ़ेंगे आगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें भी लाइंड अप हैं। आई नो हॉट वेदर है, तो आप लोगों ने अपने आप को हाइड्रेटेड रखा ना, लस्सी वस्सी बना के पी या नहीं, अच्छा मैंगो लस्सी, प्लेन लस्सी, छाछ, शरबत, रूह अफ़ज़ा, सारे के सारे जो चीज़ें हैं, कोल्ड कॉफ़ी जैसे मैं पी के आई हूँ, है ना, ऐसा ठंडा कुछ लेते रखिए, क्योंकि ठंडा पीने से दिमाग ठंडा होता है, एक्चुअली इट वर्क्स।
1: दिस इज अश्विनी ऑन लाइक अ गोल्ड। This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Star Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
3: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Thomas.
4: Taxi!
3: He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Start touring.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 45 मिनट्स पास्ट 7। आई नो हम लाइफ थियरी का टाइम आज निकल चुका है, लेकिन कोई नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कि टाइम निकल गया तो क्या आपको लाइफ थियरी नहीं सुनाएंगे। आज की लाइफ थियरी का नाम है द गोल कीपर थियरी। तो होता ये है कि छोटे बच्चों का फुटबॉल मैच चल रहा था और इस मैच में जो दो टीम्स थी उसमें से एक टीम का गोलकीपर बच्चा जो था वो बड़ी मस्ती में अपना वहाँ पे खड़ा है, नाच रहा है, गा रहा है और मैच भी शुरू है, उसे भी इंजॉय कर रहा है, अपने टीममेट्स को बड़ा मतलब वो बूस्टअप कर रहा है, उनके नाम चिल्ला रहा है और उन सबको कह रहा है यस वी विल विन, यस वी विल विन। और ये बिल्कुल भी स्ट्रेस में खड़ा नहीं है, आराम से नाचते गाते हुए अपनी धुन में और अपने टीममेट्स से बात भी कर रहा है। और जब जब बॉल आता है इसकी तरफ तब ये एकदम से सीरियसली उस बॉल को जाके पकड़ लेता है, यानी कि गोल नहीं होने देता है, है ना, और अपने टीममेट्स के पास में बॉल वापस पास कर देता है, फिर नाचने गाने लगता है, फिर अपनी धुन में, और जैसे ही बॉल पास में आया वैसे फिर से एकदम सजग हो जाता है, तत्पर हो जाता है एंड अपने उस जॉब की तरफ बड़ा फोकस होके कभी भी वो गोल नहीं होने देता एंड फाइनली उसकी टीम जीत जाती है। अब लाइफ थियरी बताइए जरा अश्विनी जी, इससे रिलेटेड जी, लाइफ थियरी में इससे रिलेटेड यही चीज़ है कि हमारी ज़िंदगी में ना कुछ लोग हम देखते हैं हमेशा सीरियस दिखते हैं, ज़िंदगी को लेके हैरान परेशान बिल्कुल, है ना, दुख दर्द पीड़ा में जीते रहते हैं, एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है। ज़िंदगी हंसने गाने के है दिन, तो निकालिए हंसते गाते हुए मुस्कुराते हुए, लेकिन कुछ लोग हमेशा ही स्ट्रेस में दिखते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े मस्त रहते हैं हंसते खेलते बातें करते हुए, और जब उनकी लाइफ में जब वो ट्रबलसम पीरियड आता है उस समय सीरियसली फोकस होकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। आप सबकी ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई होगा, मैं भी जानती हूँ कुछ ऐसे लोगों को कि आप उनको सॉल्यूशन देंगे वो प्रॉब्लम लाते हैं, दे आर प्रॉब्लम क्रिएटर्स। आप कितने भी सॉल्यूशन क्रिएटर हो लेकिन वो आपके सामने प्रॉब्लम ला के रख सकते हैं। आई एम श्योर आप सब मुस्कुरा रहे हैं, आप हर कोई हम लोग ऐसे किसी एक इंसान को ज़रूर जानते हैं जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, आपने एक सॉल्यूशन दिया फिर दूसरा प्रॉब्लम फिर कुछ और एंड दे कीप ऑन क्रॉसिंग यू। एनीवेज तात्पर्य यही है गोलकीपर थियरी का, जब जब गोल सामने आए तब फोकस करो और गोल होने से बचाओ, मतलब जब भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं देख लीजिए सॉल्यूशन मिल जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है एंड आई एम श्योर आप सभी ऐसे हैं कि काफ़ी हार्डशिप्स करके सॉल्यूशन फाइंड करते होंगे। ज़िंदगी में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आई टोटली बिलीव इन दैट। और अगर उसका सॉल्यूशन नहीं है तो ऊपर वाला आपको कुछ सिखा रहा है, आप ऐसे कुछ पैटर्न्स बार बार रिपीट कर रहे हैं, मेरी ही ज़िंदगी में ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, मुझे ही ऐसा क्यों होता है। अरे बाबा, आपको भगवान कुछ सिखाना चाह रहा है, ऊपर वाला कुछ सिखाना चाह रहा है, आप सीख नहीं रहे हो, तो इसलिए बार बार आप भी वही चोट खाते हैं, आपको भी वही चीज़ें बार बार मिलती है। रुकिए, पॉज लीजिए, ध्यान से सोचिए, क्या आप गोलकीपर थियरी अपनी लाइफ में इनकलकेट करते हैं? आहा, मुझे मत बताइएगा, ये सवाल आपके लिए, सोचिएगा और देखिए, इट विल वर्क फॉर यू। तो कैसी लगी आज की थियरी जरूर बताइएगा।
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 129.36 इंडियन रुपी, 375.71 पाकिस्तानी रुपी, 450.14 श्रीलंकन रुपी, 166.06 बांग्लादेशी टका, 88.57 अफगान अफगानी, 1.35 US डॉलर्स, 174.93 कैनियन शिलिंग, 63.73 मॉरिशियन रुपी।
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: LIKA
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £104.23 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: चलिए जी आगे बढ़ रहे हैं और इस आवर का आखिरी गीत पहुंच गए आखिरी गीत की तरफ एंड इस पे पैर थिरकाने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कह रहे हैं क्या बात है, कितनी बढ़िया तुमने द गोलकीपर थियरी बताई। सच में ये तो इस पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। बस यही होता है तात्पर्य, अभी होगी सीरियस बातें खत्म, मजा मस्ती चल रहा है यहाँ पे। सभी लोग अपने अपने किस्से कहानियाँ भी मुझे सुना रहे हैं जहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा सोचा था कि आज आराम से ये चीज़ नहीं करेंगे या ऐसा नहीं होगा। बट या व्हाट इज़ मेंट फॉर यू इट्स मेंट फॉर यू, चाहे धूप हो चाहे लस्सी हो। ऐसे होता है ना खाने पीने के मामले में भी हम सोचते हैं कि यार किसी चीज़ की हमें याद आ जाए। आप मैनिफेस्ट करते हो कि हम सोचते हैं कि अरे यार वो डिश कितने दिनों हैं खाए नहीं, तो ऐसा कुछ हो जाता है कि कभी आस पड़ोस वाले जो हैं, अगर आपके यहाँ पे कटोरी सिस्टम चलती है तो कि यू नो आई व्हेन आई यूज़ टू लिव इन एन अपार्टमेंट तो मैं अपनी आसपास के फ्रेंड्स के यहाँ पे कटोरी सिस्टम बड़ा करती थी, तो मैं जो कुछ सब्जियों से बनाऊँ तो मैं उनके यहाँ देती थी। तात्पर्य कुछ नया टेस्ट करने का होता है। हम एशियन कंट्रीज़ में कटोरियाँ खाली देते नहीं है ना, डब्बे खाली देते नहीं हैं। और जब मैंने अपनी फ्रेंड को ये नियरली 10 ईयर्स बाद ये चीज़ बताई क्यों नो कि ऐसे कुछ नहीं था कि नहीं नहीं पड़ोसी है ये वो, आई जस्ट वॉन्टेड टू टेस्ट समथिंग डिफरेंट। शी इज़ लाइक ओ नाउ आई अंडरस्टैंड। सो और भी मज़ेदार किस्से कहानी आपके पास हो तो बताइएगा, लेकिन सेकेंड आवर का हमारा जो सेगमेंट आप लोग सब बहुत पसंद कर रहे हैं, घर घर की कहानी, आपके लिए सवाल लेके आई हूँ सेकेंड आवर में।
0: Ashwini, brightening up your weeknights. This part of the show is brought to you by Star Plus.
3: Previously known as Utsav Plus.
0: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
4: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
5: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
5: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट, कॉल 01923227274, बुक योर टेबल टुडे।
0: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
6: सप्टेम्बर महीनामां હાસ્યનો ડબલ ધમાકો ફરી આવી રહ્યો છે।
7: તમે બધા પુરુષો તો લગ્ને લગ્ને કુવારા હો છો,
8: એ તમે સ્ત્રીઓ અમને છે ને પુરુષો નામ ખોટા ઓગવવાનું બંધ કરો।
6: કોમેડી કિંગ નિમેશ શાહ અને ક્વીન ઓફ કોમેડી મલ્લિકા શાહ લઈને આવી રહ્યા છે સુપર હિટ ગુજરાતી નાટક હાલો પટેલ ભાઈની જાનમાં, હવે રાઇસલીપ, પોટર્સમાર, ઇલફર્ડ, સાઉથ લંડન અને લ્યુટનમાં। ટિકિટ્સ અને વધુ માહિતી માટે આજે જ કોલ કરો મંજુને ઓન 07931534270। નાટકનું નામ યાદ રાખજો।
5: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai,
9: London. Jay's Entertainment presents Bollywood legend live in London. Bollywood actor Aftab Shivdasani. Playback singer Amantrika.
11: Hello re, hello re, hello re, hello.
9: Or soulful singer Mayuri Patalia live Harrow me. Saturday, 3rd October, 7 PM, Harrow Art Center. Tickets abhi book kijiye Harrow Art Center box office se. More information ke liye call 0777-161-5800. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
13: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
14: The Evening Show with Ashwini.
15: Like a Gold. Part of the largest Asian commercial radio network in the UK.
16: Har bhang ka rang jama ho chaka chak phir lo paan chaba aa aha।

0: वेलकम, दिस इज द सेकेंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी। और इस आवर का आगाज हमने किया था दो गीतों के साथ में, काली तेरी चोटी बाहर आने तक। तो 90s के बच्चे खुश हो गए, 80s वाले बच्चे पगुंगरू ये सुन के खुश हो चुके हैं। फैंटास्टिक फ्राइडे में होता ये है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे गीत प्ले होते हैं जहाँ पे आप लोग खुश रहते हैं और आप स्माइल करते रहते हैं, और उन गानों का आपकी लाइफ में क्या लेना देना है ये आप मुझे बताते हैं और आपकी स्टोरीज में मुझे बड़ा मज़ा आता है। ओके, तो घर घर की कहानी में आज मैं लंदन लाइफ वर्सेस हमारी एशियन कंट्री की लाइफ, इसके बीच में जो हम रहते हैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। अब होता ये है कि हमारे बच्चे यहाँ पे बड़े हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली यूरोपियन कल्चर जो है, यहाँ की कंट्री का जो कल्चर है उसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पे होता है। तो यहाँ पे आपके बच्चे जब बड़े हो रहे थे तो मदर टंग को लेके क्या डिस्कशन हुआ कि भाई घर में हिंदी, उर्दू, मराठी जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो बोलनी चाहिए या फिर इंग्लिश में ही बातों को बच्चों ने जारी रखा, और फिर आप लोगों ने भी साथ दिया और अब हाय रब्बा क्यों ये बच्चे मदर टंग में बात नहीं करते, ऐसा कुछ आपका अनुभव रहा है। चलिए बताइए कि आपके बच्चे जब आपके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं जो पीछे वहाँ एशियन कंट्रीज़ में है, तब बच्चों के मज़े आते हैं या इंटरेक्शन मुश्किल हो जाता है। फ़नी इंसिडेंट्स बताइए मुझे, सीरियस बात नहीं चाहिए, आज फ्राइडे है ना, नो दुख दर्द पीड़ा, उसमें से फ़नी क्या होता है आप मुझे ये बताइए।
1: Feel good classics all day. This is like a gold. Competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128 इंडियन रुपी एंड 65 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
2: At AJ Bell, we believe every customer deserves brilliant service, which is just one reason we're rated excellent on Trustpilot. And we all trust pilots, with their smooth, captainy voices that make you feel like you'd let them land anywhere they like. Sorry, where was I? Right, AJ Bell, rated excellent by sexy pilots. I mean Trustpilot. I'm a flight risk. AJ Bell, feel good investing. The value of your investments can go up or down.
1: This is Ash Winnie on Like a Gold.
3: Like a Gold.
4: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: Mega blockbuster Dhurandhar on Star Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
6: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners, Lyco Radio Network.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai Laika Gold.
3: आशा भोसले एंड आदि बमन की आवाज में आप सभी को सुनाया कारवा फिल्म से ये गीत इमोशन ऑफ द डे। फैंटास्टिक फ्राइडे में क्या सुनाने वाली हूँ, बिल्कुल सुनाने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले बात करते हैं इस छोटे से प्यारे से क्यूट से बच्चे के बारे में। ये 3 साल का बच्चा है एंड मध्य प्रदेश की ये घटना है कि उनकी मम्मी ने, ये छोटा जो बच्चा है इसकी मम्मी ने उस बच्चे की चॉकलेट्स खा ली और ये बच्चा जो है बेहद अपसेट हुआ। उसने कहा कि मैं आपकी कंप्लेंट पुलिस में करवाऊंगा एंड पापा के पीछे लग के देन ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन। अब उसने जाके बोला कि मुझे मेरी मम्मी के बारे में कंप्लेन करवानी है कि उन्होंने मेरी सारी चॉकलेट्स खा ली हैं, तो प्लीज़ आप उनको पनिश करो। एंड बकायदा वहाँ के पुलिस स्टेशन में जो कर्मचारी वहाँ पे जो उपस्थित थी, कॉन्स्टेबल जो पुलिस थी वहाँ पे, उन्होंने प्रॉपरली कंप्लेन लिखी एंड इस बच्चे ने साइन कि वहाँ पे 3 ईयर होल्ड पता नहीं क्या क्या कुछ तो अक्षर निकाल के आए हैं। अब उसके पापा ने ये पूरा रिकॉर्ड किया। वेल हैड्स ऑफ कि पुलिस ने भी इसकी कंप्लेन अच्छे से लिखी, उसकी सीरियसनेस, उस बच्चे का जिस सीरियसनेस से वो कंप्लेन करने आया था उन्होंने भी उतना ही सीरियसनेस दिखाया। एंड अब ये वीडियो पोस्ट हो गया है सोशल मीडिया पर, बड़ा वायरल हो रहा है। देखो अब तो बच्चों को बोल भी नहीं सकते कि पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, अब उल्टा जमाना है। अब बच्चे बोलेंगे मम्मी पापा को पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। एलो, एक पैतरा तो खत्म।
2: इमोशन ऑफ द डे।

0: इमोशन ऑफ द डे,
1: इमोशन ऑफ द डे।
0: इट्स समर ऑन द लाइका रेडियो नेटवर्क। लाइका गोल्ड। Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Laika Gold and Laika Radio Midlands from 1 PM to 4 PM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

जिगर, चैन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: Pika Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिल सकता है 129.39 इंडियन रुपी, 375.69 पाकिस्तानी रुपी, 450.28 श्रीलंकन रुपी, 166.08 बांग्लादेशी टाका, 88.55 अफगान अफगानी, 1.35 US डॉलर्स, 174.92 केनियन शिलिंग, 63.74 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £104.23 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 50 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. तो यहाँ पे अभी सबके लटके झटके वर्कआउट अच्छे से चल रहा है, क्योंकि जितने बैक टू बैक मैसेजेस आप सब हमें भेज रहे हैं उसमें समझ में आ रहा है कि कितना एंजॉय कर रहे हैं आप लोग ये शो. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. मंडे से लेके फ्राइडे तक शाम 7 से 10 रहता है आपका हमारा ये साथ. एंड हर रोज कुछ ना कुछ नया लाने का पूरा प्रयत्न होता है, पूरी पूरी कोशिश होती है. आपकी कसम से सुनाया आप सभी को किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ में जय जय शिव शंकर. बड़ा मस्ती भरा गीत. एंड किशोर कुमार, लता मंगेशकर, इन्होंने कितनी मस्ती करी होगी ये तो मुझे हमेशा ही लगता है इस गाने को सुन के. कुछ कुछ गाने जो हैं किशोरदा के वो इतने मस्ती भरे रहना, वहाँ पे म्यूजिशियंस कितने मुस्कुराते हुए, और क्या एनर्जी आती होगी ना उन सब में. ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई मदर टंग के बारे में बात हो रही थी, कि जब बच्चे हम बड़े हो रहे हैं तो क्या आप लोगों ने घर में कंपलसरी कहा है कि भाई जो मदर टंग है वही बात की जाएगी या इंग्लिश में बात होगी. अभी कुछ कुछ जगह पे लोगों का कहना है, कुछ लोगों ने मैसेज किया कि भाई नए नए जब हम आए हमें लगा कि हमारे बच्चे जो हैं अंग्रेज़ी में बात करें, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लग रहा था. लेकिन बाद में उनकी वो आदत इतनी बढ़ती गई कि आज हम हिंदी में बोलते हैं लेकिन वो आंसर इंग्लिश में ही करते हैं. और कुछ लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पे तो घर में कंपलसरी हमारी जो भाषा होती है वही बोली जाती है. जी हाँ, बिल्कुल, हमारे घर में भी हमने यही किया था कि वी आर महाराष्ट्रियंस, मराठी पीपल, तो हमने भी अपने घर में कम्प्लीटली मराठी माहौल रखा. हाँ, होता ज़रूर है कि जब बच्चे कम्प्लीटली यहाँ बड़े होते हैं तो आपकी जो मातृभाषा होती है उसमें थोड़ा इंग्लिश वाला इम्पैक्ट आता है, तो वो अपनी अपनी मातृभाषा जो है कई बच्चे अपनी इंग्लिश एक्सेंट में वो अपनी मदर टंग में बात करते हैं. बड़ा क्यूट लगता है वो सुनने में. एंड स्पेशली जब हम अपने अपने देश जाते हैं तो वहाँ पे लोग बड़े हंसते हैं, लोगों के लिए हंसी का रीज़न होता है, नॉट इन अ बैड वे, लेकिन दे डेफिनेटली एंजॉय. चलिए, इस आवर का आखिरी गीत आपको सुना रहे हैं जुबैदा खानम की आवाज़ में सरफरोश से, और यही गीत हमें ले चलेगा 9 o'clock की न्यूज़ की तरफ.
0: LIKA Radio Network, broadcasting across Greater London. This is Ashwini on LIKA Gold.
3: This part of the show is brought to you by Star Plus.
4: Previously known as Utsav Plus.
3: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
5: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934.
2: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410।
3: साउथहॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन।
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635. 757 Greens by Danube, prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Khakra crunch, bhakri munch, chikki sweet, papad beet, pickles heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
9: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
8: Jaimin Foods desi cravings, available at nearest ethnic grocery stores.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
11: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 02071321458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
12: द इवनिंग शो विद अश्विनी,
0: 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app। दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क।

वेलकम, दिस इज द थर्ड एंड आखिरी आवर. और इस आवर का आगाज हमने किया था उदित नारायण की आवाज में, चांदनी आया तेरा दीवाना. आई लव द बीट्स ऑफ दीस सॉन्ग, दिस सॉन्ग, नॉट दीस सॉन्ग, बाकी सॉन्ग्स भी हैं. उसके बाद में सागर फिल्म से आपको आशा भोसले और

0: मिलेंगे 128 इंडियन रुपी एंड 65 पैसे। एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: Breakfast for London at Breakfast and Drive.
1: At AJ Bell, we believe investing is for everyone. Even people who know nothing about investing. Like Keith, who thought dividends were a boy band. Jessica, who thought compound interest was a prison dating app. And Sue thought FTSE 100 was a bit of under-the-table fun, which surprised her accountant.
2: Oh, no.
1: If we can make investing feel good for them, it's no wonder which have recommended us 8 years running. AJ Bell, feel good investing. The value of your investments can go up or down.
0: This is Ash Winnie on Like a Gold. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
0: Mega blockbuster Dhurandhar on Star Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
4: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय 7-piece बैंड एंड मनीषा शर्मा गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £25 बुक टिकट्स एट heroartcenter.com बॉक्स ऑफिस का नंबर है 02037737161 एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Like a radio network.
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
6: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02037736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज What's your travel mantra?
7: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
8: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Southall Travel.
8: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
7: Southall Travel can take you there.
9: Southall Travel, at all protected.
10: Two businesses.
11: Same town.
10: Same service.
11: One appears on page one of Google.
10: The other doesn't.
11: Guess which one gets the customer?
10: The truth is brutal.
11: The first page of Google gets the business.
10: Everyone else gets what's left.
11: So here's the real question.
10: When your customers search for what you sell, do they find you?
11: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
10: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
12: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर
13: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208-426-0678.
14: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा.
15: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Awarapan 2.
14: उसने मुझे छुआ, पर अपना यानी.
15: तो फिर. Now in cinemas. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
0: Like a gold. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे
16: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: What a beautiful track. लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में प्रोफेसर फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत। 1962 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। तो भाई आज 14th ऑफ अगस्त पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, कल इंडिया इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। एंड हर रोज़ कुछ ना कुछ तो स्पेशल हम सब की लाइफ में होता है, किसी के लाइफ में कुछ नया शुरू हो रहा है, किसी की लाइफ में कुछ अंत हो रहा है क्योंकि नया कुछ आने वाला है, किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी। तो आज और भी बहुत कुछ मनाया जाता है। आज मनाया जाता है वर्ल्ड लिजर्ड डे, नेशनल टैटू रिमूवल डे, इंटरनेट ब्लैकआउट डे इन मलेशिया, आफ्टरनून टी वीक, उसके बाद में नेशनल सोशल सिक्योरिटी डे, फाइनेंशियल अवेयरनेस डे। हाँ ये ज़रूरी है बिल्कुल, हाँ पैसा फाइनेंस से रिलेटेड अवेयरनेस। अच्छा व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस मुझे हमेशा लगता है कि स्कूल कॉलेज में ना एक स्पेशल सब्जेक्ट जो है शुरू करना चाहिए, स्पेशली फाइनेंशियली अवेयर होने के लिए बच्चों को अगर बचपन से ही फाइनेंस से रिलेटेड अगर चीज़ें सिखाई जाएँ तो वो उस चीज़ को लेके अवेयर रहते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग, बड़ी बड़ी ब्रांडेड चीज़ राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड की मुझे इस ब्रांड का चाहिए, उस ब्रांड का चाहिए, लेकिन उसके पीछे खर्चा कितना होता है, माँ बाप के कितने एफर्ट्स इसमें लगते हैं, पैसा दुनिया में वर्क कैसे करता है, पैसे की वैल्यू कैसे बढ़ती है और आपकी वैल्यू भी कैसे नापी तोली जाती है, इन चीज़ों को लेके भी कहीं ना कहीं आई थिंक बच्चों को उसके रिलेटेड बताना ज़रूरी है। फाइनेंशियल अवेयरनेस आप और हम सभी जो हैं, अगर हमारे समय पे भी चीज़ें अगर आ जाती तो अच्छा होता। अब कई स्कूल्स जो हैं फाइनेंसेस को लेके स्पेशली उन्होंने कुछ कोर्सेस शुरू किए हैं और हमेशा मुझे लगता है कि भाई कुछ चीज़ें हमें अपनी ओनरशिप उस चीज़ को लेके लेनी चाहिए, अपनी अकाउंटेबिलिटी, नॉट ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे कॉलेज जो हैं उन्होंने हमें उनकी कैपेसिटी में और कैपेबिलिटी में जो भी चीज़ें थी वो उन्होंने सिखाई। आप अगर कॉन्शियस हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं कि अला फलान चीज़ मुझे करनी चाहिए तो करो भाई। कितने सारे कोर्सेज़ हैं ऑनलाइन, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, इन पर्सन जाके कोर्सेज हैं। आप अगर लंदन शहर में रहते हैं तो हज़ारों ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज़ हैं जो आप करके अपने आप को काफ़ी विजिलेंट तरीके से आप चीज़ों के साथ में डील कर सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल विचार है, आई एम श्योर आप सबके भी विचार इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ होंगे। अच्छा होता ये है कि मेरे गुड नाइट के मैसेजेस मैं अभी शुरू करती हूँ तो इट टेक्स मी रियली लॉन्ग टाइम, इतने सारे लोग शो सुनते हैं और सबको गुड नाइट कहने में थोड़ा जल्दी मैं मैसेज लिखना शुरू करती हूँ क्योंकि मुझे किसी को भी छोड़ना नहीं होता या मिस आउट नहीं करना होता। अगर गलती से मिस आउट हो जाए तो मेरे प्यारे लिसनर सोचते हैं कि मैं गुस्सा हो गई हूँ। नहीं नहीं नहीं जी बिल्कुल, अगर ऐसे कभी हो गया है तो माफ़ी आप सबसे, कभी छूट गए होंगे मैसेजेस आपको गुड नाइट कहने में, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि आप सब जब इतना अपना टाइम देते हैं, प्यार देते हैं तो भी बनता है कि एक प्यारा सा मैसेज कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इतना तो मैं बेसिक कर ही सकती हूँ।
1: लाइका गोल्ड।
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
1: दिस इज अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: One performer, countless personalities, a whole universe of entertainment.
5: Sunil Grover, live UK tour 2026.
4: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
5: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises.
4: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
4: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: जन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है. Backstage siblings perform live for the very first time in the UK. Join the pioneers of bhajan jamming on Friday the 9th and Saturday the 10th of October at SKLPC Northolt. Ek sham soulful music, devotion aur energy ke naam. Tickets book kijiye on SKLPC.com/BSS. Exclusive radio partners Leica Radio Network.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: Dad.
9: What's wrong, beta?
8: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
9: I will run down to the money exchange now.
8: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
9: Oi, balle balle. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
10: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
11: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: Cool music for a super hot summertime on Leica Gold. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 129.32 इंडियन रुपी, 375.72 पाकिस्तानी रुपी, 450.16 श्रीलंकन रुपी, 166.08 बांग्लादेशी टाका, 88.57 अफगान अफगानी, 1.35 यूएस डॉलर्स, 174.96 केनियन शिलिंग, 63.74 मॉरिशियन रुपी.
3: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: LEICA Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £104.23 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ. इट्स नियरली 40 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. कल हम मनाएंगे इंडियन इंडिपेंडेंस डे, तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं. और उसी से रिलेटेड एक गीत आपको सुना रही हूँ. गज़ल या कव्वाली, मैं क्या सुनाने वाली? आज सुनाने वाली हूँ कव्वाली, तो ज़रूर सुनिएगा. हमेशा की तरह इतना ही कहेंगे, प्यार बड़ी खूबसूरत चीज़ है, तो प्यार दो, प्यार लो. एंड लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, प्लीज़ उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, अपने मन की चीज़ें बोल के दिखाएं. मिलेंगे अगले सप्ताह मंडे फिर से, तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा. हियर अस, बाय बाय, लव यू ऑल.
0: दिस इज लाइक अ गोल्ड.
5: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply।
1: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Like a Gold.
2: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइक अ गोल्ड रेडियो, लाइक अ रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स पर।
1: लाइक अ गोल्ड ऑफिशियली लंदन्स नंबर 1 एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन।

0: Like a Gold.
1: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Star Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m. Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
3: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
1: live on Sunday, the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
3: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
1: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
3: Exclusive radio partner, Lyca Radio Network.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danu. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
7: गारंटेड
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
7: 02085748410।
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: Dad, Dad, Dad!
9: What's wrong, beta?
8: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
9: I will run down to the money exchange now.
8: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
9: Oi, bale bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
8: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है pre-booking sale का शानदार मौका. अब सभी Bosch boilers पर सीधे £350 की बचत. 25 kilowatt boiler सिर्फ £1,890 से पूरी तरह fitted. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की Bosch guarantee. तो इंतजार मत कीजिए. अभी कॉल करें 02081502025 or visit meraboiler.com. T's and C's apply.
11: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का

0: ये है Like a Gold. One performer.
1: टीवी के सामने प्रोडक्शन से कहने क्या पहनी है तुमने साड़ी भाई या खिलाड़ियों के खिलाड़ी?
2: Countless personalities.
3: जिंदगी बर्बाद हो गई है.
0: A whole universe of entertainment.
4: नन्हा फंक्शन रखा हुआ है.
2: Sunil Grover live UK tour 2026.
0: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabi to brand new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK.
0: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
0: South or travel at all protected.
6: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars, supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner, Leica Radio.

0: The biggest classics throughout the night, non-stop, on Gold Nights. Like a Gold on 10:35 AM.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: All protected.
2: Visit travelhubworld.com.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just 711,000 pounds.
4: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: Khatron Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lionecroft.
6: खतरों के खिलाड़ी
7: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
9: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham. This October, for sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
10: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
11: 4 beers, please, garçon!
10: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our 4 stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
12: Bollywood ke legend kalakar. Sirf Leica Gold par.

0: का गोल्ड
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय टैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02 03963 5757 Greens by Danube Prime location
1: High appreciation
2: in Dubai
3: The South Asian Film Festival UK

0: This is Like a Gold.
1: Dad.
2: What's wrong, beta?
1: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
2: I will run down to the money exchange now.
1: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
2: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
1: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410। साफो ट्रेवल at all protected.
4: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
5: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
4: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
5: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
4: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
5: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
6: Laika Gold par har raat ki yahi reet. Purane magar sada bahar geet.